648 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि। तदनुसार 13 जून सन 2026 सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें। वैष्णवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा।

0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकास और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत की पावन धरती त्याग, बलिदान और गौरव की अमर गाथा है। इसकी मिट्टी में शहीदों का सम्मान और हवाओं में स्वतंत्रता का संदेश गूंजता है। आइए देश प्रेम और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ सुनते हैं एक ओजपूर्ण देशभक्ति गीत।

जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब महादेव का स्मरण मन को शांति और संबल प्रदान करता है। उनकी कृपा भक्तों के जीवन में आशा और विश्वास का प्रकाश भर देती है। संकट में जो साथ दे, सुख में रहे न दूर, ऐसे मेरे भोलेनाथ कृपा करें भरपूर। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं भोलेनाथ का यह भावपूर्ण भजन।

भगवान श्री राम मर्यादा, सत्य और धर्म के आदर्श स्वरूप हैं। उनका स्मरण जीवन में धैर्य, प्रेम और सदाचार का मार्ग दिखाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं श्री राम को समर्पित ये मधुर सा भजन।

संत रविदास जी ने प्रेम, समता और मानवता का संदेश दिया। उनका ये प्रसिद्ध दोहा आज भी हमें आंतरिक पवित्रता का महत्व बताता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया जा रहा था। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कुछ महत्वपूर्ण विचार आज के चिंतन में। आज का विषय है स्व का काम।
1: स्व का ज्ञान या आत्मबोध संसार का सबसे प्राचीन और सबसे गहरा विषय है। सुकरात ने कहा था, स्वयं को जानो, और भारतीय उपनिषदों का मूल मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हम वास्तव में कौन हैं? अक्सर जब हमसे पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो हम अपना नाम, पेशा या पारिवारिक संबंधों का हवाला देते हैं, लेकिन यह स्व का वास्तविक परिचय नहीं है। शरीर, नाम, पद और प्रतिष्ठा केवल बाहरी पहचान है जो समय के साथ बदलती रहती है। दार्शनिक दृष्टिकोण से स्व वह दृष्टा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और शारीरिक परिवर्तनों को देख रहा है। मनोविज्ञान में से सेल्फ एंड अवेयरनेस कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपनी शक्तियों, कमजोरियों, भावनाओं और मूल्यों को गहराई से समझता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम दूसरों के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन खुद से अनजान है। स्वज्ञान के बिना जीवन एक ऐसी नाव की तरह है जिसका कोई पतवार नहीं। जब हम खुद को जानते हैं तो बाहरी आलोचना या असफलता हमें विचलित नहीं करती। हम जानते हैं कि हमारी खुशी दूसरों के निर्णय पर निर्भर नहीं है। स्वज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। यह हमें भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने स्वयं के मूल्यों के आधार पर करियर और रिश्तों का चुनाव करने की शक्ति देता है। अपनी भावनाओं को पहचानना स्वज्ञान का हिस्सा है।

0: जब हमें पता होता है कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है या हम उदास क्यों है, तो हम उन भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। स्व को जानने की प्रक्रिया रातों रात पूरी नहीं होती, यह एक सतत अभ्यास है। जब आप एक विचार को केवल विचार की तरह देखते हैं और उससे जुड़ते नहीं हैं, तो आप अपने वास्तविक स्व के करीब होते हैं। महान दार्शनिकों की पुस्तकों का अध्ययन और नियमित रूप से खुद के साथ समय बिताना अनिवार्य है। एकांत में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ध्यान वह उपकरण है जो मन के शोर को शांत करता है। जब मन शांत होता है, तब स्व का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। स्वज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार है। हम समाज को खुश करने के लिए एक नकली व्यक्तित्व बना लेते हैं और धीरे धीरे उसी को सच मान बैठते हैं। खुद की कमियों का सामना करने का डर हमें आत्मनिरीक्षण से रोकता है। आज के डिजिटल युग में बाहरी सूचनाओं का इतना शोर है कि अंतरात्मा की आवाज दब गई है। जीवन का परम लक्ष्य स्व का ज्ञान प्राप्त करना केवल आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक सफल और संतुलित जीवन की नींव है। जिस व्यक्ति ने खुद को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। आत्मज्ञान हमें जीने और केवल अस्तित्व में होने के बीच का अंतर समझाता है। स्वयं को जानना ही सभी ज्ञान की शुरुआत है। संक्षेप में, स्व का ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
1: अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम स्व का ज्ञान करता है। जी हाँ श्रोताओं, इसी विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया जा रहा था।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज जानकारी दी जाएगी बीजोपचार के बारे में, तो आइए सुनते हैं खेती की बातें।
1: किसान भाई नोनी राम राम। किसान भाई नोनी, देखो अब बोवनी लगने वाली छे, न बोवनी से पहले हमको अपना खेत में तैयारी करी न रखनू पड़ेगा, न जो भी बीज बीजाई हमको बोनू उसकी तैयारी तो हमने राखी ली, पर बीज बोना से पहले उनको उपचार करना भी बहुत जरूरी छे, क्योंकि यदि हम बीज उपचार करी लेवांगा तो जो हमारी फसल रहेगा वो कीड़ा नसी मुक्त रहेगा, नौका में कोई रोग व्याधि भी नहीं लगने को। एक कारण भाई नोनी, बुवाई से पहले बीज नख रसायन या जैविक पदार्थ नसी उपचारित करना बहुत जरूरी छे। ई बीज नख हम शुरुआत में कीट फपूंद रोग नसी बची सकान, जेका सी पौधा स्वस्थ रह न उपज में भी 5 से 10% तक वृद्धि हुई जाए। किसान भाई उन्होंने बीज न मिट्टी जनित रोग नसी बचावना करे न शुरुआत में हम अपना जो बीज छे अपनी जो फसल छे उखा हानिकारक फपूंद जीवाणु रह उनका नष्ट करी देवा, न अच्छा अंकुरण का लेना उपचारित बीज मट्टी में जल्दी न समान रूप से अंकुरित हो, जैविक उपचार जसों की राइजोबियम सी पौधा न की जड़ न को विकास भी तेजी से हो। भाई बहन होनी, दलहन न तिलहन म कई प्रकार की विधि न अपनाई जाए, जिसका में फपूंद नासी भी छे, कीट नासी भी छे, न राइजोबियम कल्चर भी छे। सबसे पहले तो बीज नख फपूंद नाशक जसों की कार्बेंडाजिम या थायरम से उपचारित करा। कीटनाशक का लेना अपन फपूंदी नाशक सुखाने का बाद कीटनाशक जसो की इमिडा क्लोरोपीड लगावा, साथ ज आखिरी में बुआई से ठीक पहले जैविक कल्चर यानी कि राइजोबियम या पीएसबी कल्चर से उखो उपचारित करा। एक अलावा बीज उपचार की आरु दूसरी विधि न भी छे न, एका में हम दवा या जैविक पाउडर की पतली परत बीज न पर चढ़ी सकान, एक

0: बर्तन ड्रम या प्लास्टिक की थैली में बीज ने दवा डाली ने अच्छी तरह से मिली सकान जेक हम बीज कोटिंग कवान बीज नख भिगोई ने भी हम ये करी सकान। कुछ विशेष बीज नख दवा या पोषक तत्व का घोल नम कुछ घंटा का लेन हम भिगोई सकान। साथ ही हमको ये बात न ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाला रसायन न जैविक कल्चरज को उपयोग करा जेका सी हमारा बीज बीमारी न सी न कीड़ा न सी मुक्त रहे। दवा की मात्रा जो रहे वो हमेशा कृषि विशेषज्ञ न का निर्देश का अनुसार डाला कि जो भी दवा हम अपना बीज उपचार में प्रयोग में लाई रहे वो दवा हम कृषि विशेषज्ञ न सी जानकारी ले लेवा कि वो दवा सही छे नौका से हमारे बीज न को उपचार अच्छी तरह से हुई जाएगा। उपचारित बीज न का कभी भी सीधा घाम में नहीं सुखाड़ा ओका हमेशा छाया में सुखाई न जल्दी से जल्दी आमतौर पर 4 से 24 घंटा में बुवाई करी देवा। साथ ही भाई बहन होनी और कुछ बातों को भी हम ध्यान रखा जैसे कि हमने बताया कि बीज न का हम जैव रसायन का द्वारा भी उपचारित कर सकान रसायन का द्वारा भी न कीट नियंत्रण का लेना भी उपचार कर सकान। जैव रसायन में हम ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज सुडोमोनास 4 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की हिसाब से उपचारित कर सकान। रसायन की बात करा तो एक कार्बेंडाजिम या मैंकोजेव या बेनोमिल 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज कैप्टन या थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर सकान। कीट नियंत्रण की बात करा तो एक क्लोरपाइरीफॉस 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से एको नियंत्रण करा। साथ इमिडा क्लोरोपिड या थायोमेथॉक्सम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का हिसाब से या फिर मोनोक्रोटोफास 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज का हिसाब से हम इनको कीट न को नियंत्रण कर सकान पर सब्जी न में नियंत्रण नहीं कर सकता। साथ बात करा पोषक तत्व स्थिरीकरण की तो नत्रजन स्थिरीकरण का लेना राइजोबियम एजोटोबैक्टर न एजोस्पाइरल 250 ग्राम प्रति 10 से 12 किलोग्राम बीज फास्फोरस विलयन हेतु PSB जेको फास्फोबैक्टीरिया भी कहे 250 ग्राम प्रति 12 किलोग्राम बीज न पोटास स्थिरीकरण का लेना पोटाशिक जीवाणु 250 ग्राम प्रति 10 से 12 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़े। बीजोपचार से भाई बहन कई लाभ होगा कि एकासी ज्यादा से ज्यादा अंकुरण होगा जो पौधा रहेगा वो अच्छा मजबूत रहेगा न शुरुआत में हमका रोग न की पहचान हुई जाएगा जेकासी स्वस्थ पौधा न की संख्या भी बढ़ी जाएगा। तो भाई बहनी ई बात न को हम ध्यान रखा पर एक बात और ध्यान रखा कि बीजोपचारित करने का बाद जो उपचारित बीज है उनका कभी भी खुला घाम में नहीं सुखाड़ा जबकि छायादान जगह पर सुखाड़ा न बीजोपचार करने का बाद उपचारित करने से 4 घंटा का अंदर होकर बुवाई करी देवा। किसान भाई बहनों ने इस बातों को हम ध्यान रखेगा तो निश्चित रूप से हमका हमारी फसल को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज बीजोपचार के बारे में जानकारी दी गई। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार हैं अनुराधा पौड़वाल।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थी अनुराधा पोडवाल, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर और गूगल पर आकाशवाणी इंदौर लाइव सर्च करके भी सुन सकते हैं। सवेरे के 6:50 हो चुके हैं। ये वक्त है आपको दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देने का, तो आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सवेरे 7:35 पर हम आपको सुनवाएंगे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल। 8:30 सुनिएगा फिल्म संगीत। लोक संगीत का समय रहेगा 9:00 और 6:45 का। कलाकार होंगे गीता पराग और साथी। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं 9:15 पर और 6:30 पर। इस कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे रूप कुमार राठौड़। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा हमेशा की तरह 9:30 का। आज इसमें उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गाया राग तोड़ी आपको सुनवाएंगे। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन प्रसारित होगा 10:05 से 11:00 तक। हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं, वे समय याद रखें 10:05 से 11:00।

तक। और हमारे फ़ोन नंबर नोट करें 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731।

शाम 5 बजे का समय होगा युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी का। आरंभिक चर्चा होगी और इसी के साथ युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स सुनवाया जाएगा। 5:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत।

संध्या 6 बजे विशेष कार्यक्रम होगा विकसित होता भारत। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर योजना क्रम के तहत जानकारी दी जाएगी। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत सोनम मोदी से बातचीत सुनवाई जाएगी। और सुगम संगीत जैसा हमने आपको बताया था, समय रहेगा 6:30 का। कलाकार होंगे रूप कुमार राठौड़। हमेशा की तरह खेती गृहस्थी का समय रहेगा संध्या 7:20 का। आज की बात होगी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर, साथ ही विश्व रक्तदान दिवस रक्तदान महादान इस विषय पर दीपक नाइक से भेंटवार्ता सुनवाएंगे। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर चित्र गीत आपको सुनवाएंगे। 9:30 राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि सवेरे 8:30 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, सवेरे 10:05 से सवेरे 11 बजे तक हम आपको सुनवाएंगे MH हॉटलाइन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमें फ़ोन करने के लिए नंबर हैं 2710223 और 2710224, इंदौर का STD कोड 0731। तो याद रखें, MH हॉटलाइन कार्यक्रम का समय होगा सवेरे 10:05 से 11 बजे तक। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण होगा, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में। समाचार दिल्ली से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विनिर्माण आधारित वृद्धेः वृत्त्यावसर निर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्वं प्रदत्तम्, येन औद्योगिक वृद्धिः त्वरिता अभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा गल्फ प्रदेशे यूएस नौसेनया कृताक्रमणस्य विषये प्रबलं विरोधं प्रकटितम्, यस्मिन् त्रयः भारतीयाः नाविकाः मृताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले एकस्मिन् लेखे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् वाणिज्यिक नौवहनं विरुद्धं एतादृशानि प्राणघातक आक्रमणानि न्यायोचितानि न सन्ति इति। ओमान तटस्य तटे पलाव ध्वजयुक्तस्य एमटी सेटेबेलो जलयानस्य उपरि अमेरिकादेशस्य आक्रमणे भारतीय दलस्य त्रयः सदस्याः मृताः, येन नवदिल्ल्यात् तीक्ष्ण प्रतिक्रिया प्रदत्ता। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः दृढतया उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य समये स्वदेशीय प्रक्षेपास्त्राणां असाधारणं प्रदर्शनं भारतस्य रक्षाशोधस्य विकास पर्यावरण व्यवस्थायाः वर्धमान शक्तेः परमाणम् अस्ति। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनस्य रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशालायां उन्नतास्त्र प्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एवास्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीय रात्रौ प्रचण्ड वृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं चाभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृंखलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में एससीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कम्प्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।

0: ये धरती ये नदिया ये रहना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: हमारे मेहमान।
3: जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, इसे बड़ी करने का बस एक ही तरीका है। मानव होने के नाते कुछ तो ऐसी निस्वार्थ निशानी छोड़िए कि आने वाली पीढ़ी को लगे कोई इस जीवन पथ से गुजरा था। मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये सबसे लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का।
4: श्रोताओं, इस रविवार 14 जून को सुबह 11 बजे सुनिए हमारे मेहमान कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं दीपक विभाकर नाइक, आप रक्त दीप के नाम से प्रसिद्ध हैं। और रक्तदाता दिवस पर ये हमारा विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती के इंदौर केंद्र से।
2: हमारे मेहमान।
5: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
6: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
6: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
7: मालवा की शान,
0: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज समापन। कृषि मंत्रियों की बैठक में साझा दस्तावेज पर लगेगी मुहर। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल दौरे पर, शूटर्स से मुलाकात, स्वच्छता अभियान और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। ये परेड इस बार ऐतिहासिक होगी क्योंकि पहली बार लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी परेड में शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक कैडेट सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा श्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की पर रवाना होंगे। ब्रातिस्लावा में वे स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और आखिरी दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बैठक में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, कृषि नवाचार और तकनीकी साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। सदस्य देश कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय सुधारने और टिकाऊ कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए साझा रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं कल हुई चर्चा में श्री चौहान ने कहा,
1: छोटे किसानों की बेहतर आजीविका के लिए, महिलाओं की भागीदारी और खेती में बढ़े इसके लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ब्रिक्स देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि आधी आबादी तो यहीं रहती है दुनिया की और 43% से ज्यादा उत्पादन यहाँ होता है। आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है। हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गृह विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस बल को साइबर अपराधों से निपटने के लिए आईटी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों को जांच भत्ता देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा, भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नशा विरोधी अभियान को लगातार जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने 2028 के सिंहस्थ पर्व को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने के भी निर्देश दिए। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। डॉ. सोमनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता को किसी भी तरह से प्रभावित करने या छेड़छाड़ करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी द्वितीय अवसर परीक्षा का परिणाम कल शाम घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। 62% से अधिक छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 57 से अधिक रहा। परीक्षा में शामिल 1,42,000 से अधिक विद्यार्थियों में से 84,871 विद्यार्थी सफल हुए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल के दौरे पर हैं। सुबह 7:30 बजे से वे शूटिंग एकेडमी में शूटर्स से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 8 बजे सूरज नगर में स्वच्छता अभियान में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे विवेकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने कहा कि अधिक से अधिक परीक्षाएं टैबलेट और कम्प्यूटर आधारित कराई जानी चाहिए ताकि प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए आसान और जवाबदेह बने। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 47,000 से अधिक रिक्तियों के लिए 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती पूरी कर ली है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड आवेदन संग्रहण में प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश में अब तक 10,000 से अधिक क्रेडिट कार्ड आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। जिनमें से 500 से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये योजना शहरी पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही है। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग श्रद्धालु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज से 18 जून तक वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर जाएंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कल लाभार्थियों को यात्रा टिकट वितरित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून 15 से 18 जून के

प्रदेश दस्तक दे सकता है। इससे पहले प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं। कल जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी सहित कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है, जबकि इंदौर, उज्जैन और आसपास के जिलों में तेज धूप खिली रहेगी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजवेस्टन मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 219 रन बनाए, जिसमें डैनी वैट हॉल्स ने शानदार नाबाद 105 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 132 रन पर ही सिमट गई। डैनी वैट हॉल्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीमें भाग ले रही हैं। भारत का पहला मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने एक बैठक के दौरान शहर के पास बनाए गए बड़ौदी फूड पार्क में एक ही फर्म को प्लॉट अलॉटमेंट के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। खंडवा में निमाड़ क्लब परिसर में जिम, क्रिकेट टर्फ जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएंगी। आगर मालवा स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित किए गए विधिक जागरूकता शिविर में बच्चों को शिक्षित कर उनके शैक्षणिक विकास के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। मेहर कलेक्टर ने खदान से खनिज पदार्थ निकालने के बाद बिना क्लोजर प्रोटोकॉल का अनुपालन किए खुला छोड़ने से होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया है। झाबुआ में खरीफ की बोनी शुरू होने से उर्वरकों की मांग बढ़ी है। जिला प्रशासन ई विकास प्रणाली से वितरण पर नजर रखेगा। बैतूल जिले के आदिवासी विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत रंभा के रिंगढाना कस्बे में कल रात भीषण आग लग गई और आग ने करीब 15 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। मंडला कलेक्टर की अध्यक्षता में वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार दावों की समीक्षा की गई। शुजालपुर नगर पालिका परिसर में आयोजित जनकल्याण शिविर के पहले दिन 46 आवेदन प्राप्त हुए। शुजालपुर में शिविर का आयोजन 13 और 14 जून को भी जारी रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

सुनहरे पल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को विजया जैन का प्यार भरा नमस्कार। आइए श्रोताओं, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं जबक फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। संगीत चित्रगुप्त का है और गीत रचना प्रेम धवन की।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं परवाना फिल्म का गीत। गीतकार कैफी आज़मी, संगीतकार मदन मोहन।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
2: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना ठोकर फिल्म का गीत। गीतकार थे सजन दहलवी, संगीत श्याम जी घनश्याम जी का। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में यादगार फिल्म का गीत। गीत रचना इंदिवर की, सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।
1: उस पथ

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में
1: ये अगला गीत।

मंजिल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले की आवाज़ थी। गीत लिखा था योगेश ने, संगीत राहुल देव बर्मन का था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सीमा फिल्म का गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और शारदा ने।

तलाश फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत SD बर्मन का।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कर्तव्य फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना कर्तव्य फिल्म का गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही सुनहरे पल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दे नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि सवेरे 8:30 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और आज सवेरे 10:05 से 11 बजे तक आप सुन सकते हैं MH हॉटलाइन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए हमारे फ़ोन नंबर नोट करें 2710223 और 2710224, इंदौर का STD कोड 0731। तो याद रहेगा ना आज का दिन और समय 10:05 से सवेरे 11 बजे तक MH हॉटलाइन कार्यक्रम में।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ।
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे।

0: के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चर मिनिस्टर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
4: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
6: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
9: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Kerglos for their bilateral summit, where defense, space, civil nuclear energy, technology and people-to-people ties are expected to feature prominently on the agenda. India and France share over 25 years of strategic partnership with deep cooperation in defense,

मीडियम वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, आज का दिन 13 जून इतिहास के पन्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन कुछ ऐसी हस्तियों का जन्म हुआ था जिन्होंने अपने कार्यों से भारतवर्ष को एक नई दिशा और दशा दी थी। आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसी ही हस्तियों की। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं गणेश दामोदर सावरकर की, जिन्हें बाबा राव सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 13 जून को नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। आप विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे और अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे। आपने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान की सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया था। 16 मार्च को उनका निधन हो चुका था, लेकिन उनके कार्य हमेशा भारत की आज़ादी के कार्यों में याद किए जाते रहेंगे। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारा शत शत नमन।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

बात की। उनका जन्म आज ही के दिन केरल में हुआ था। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक थे और पहली बार उन्हें लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी हासिल हुआ। उन्होंने भूमि सुधार, शिक्षा, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए थे। वे कुशल लेखक और विचारक भी थे। ईएमएस का योगदान भारतीय राजनीति और समाज सुधार में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

दोस्तों, आज ही के दिन जन्म हुआ था एक प्रतिष्ठित भारतीय राजनीतिज्ञ, चार्टर्ड अकाउंट और अनुभवी प्रबंधन विशेषज्ञ, जिनका नाम है पीयूष गोयल। ये वर्तमान में भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इन विभागों में रेलवे, कोयला और ऊर्जा मंत्रालय जैसे अहम विभाग शामिल थे। राज्यसभा में कई वर्षों तक आप सरकार के नेता भी रहे। ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें 2018 में कार्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। उनका राजनीतिक और आर्थिक ज्ञान भारत की नीतियों को मजबूती देने में सहायक रहा है।

श्रोताओं, अब बात करते हैं भारत के एक प्रमुख पूर्व क्रिकेटर और कुशल बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज रहे मनिंदर सिंह की। आपका जन्म 13 जून यानी आज ही के दिन 1965 को पुणे में हुआ था। उन्होंने भारत के लिए 35 टेस्ट और 59 वनडे मैच खेले, जिसमें से उन्होंने क्रमशः 88 और 66 विकेट हासिल किए। बहुत कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले मनिंदर को बिशन सिंह बेदी का उत्तराधिकारी माना गया था। हालांकि उनके करियर को कुछ व्यक्तिगत संघर्षों ने प्रभावित किया था। क्रिकेट से संन्यास के बाद वे कमेंटेटर और कोच के रूप में भी सक्रिय रहे। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और जीवन के उतार चढ़ावों पर खुलकर बात की, जिससे के लिए आज भी वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।

श्रोताओं, आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है इस रोग से ग्रस्त लोगों के अधिकारों की सुरक्षा रखना और उनके प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करना। अल्बिनिज्म एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति की त्वचा, बाल और आंखों में रंग द्रव्य यानी मेलानिन की कमी होती है। इसके कारण उनकी त्वचा सूरज की किरणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है और उन्हें दृष्टि संबंधी समस्याएँ भी हो सकती है। इस रोग से ग्रस्त लोगों को कई बार समाज में भेदभाव, उपेक्षा और कभी कभी हिंसा का सामना भी करना पड़ता है। इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता फैलाकर उनके लिए एक सुरक्षित, समान और सम्मानजनक वातावरण तैयार करना है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 से आज ही के दिन इस दिन की शुरुआत की गई थी। हमें अल्बिनिज्म को समझना चाहिए और इससे ग्रस्त लोगों को समाज की मुख्य धारा में सम्मानपूर्वक स्थान देना चाहिए।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दे नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गीता पराग और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। श्रोताओं, हमारी संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का आगाज गजानन गणपति की वंदना के साथ किया जाता है। आइए ऐसी ही पारंपरिक रचना सुनवाते हैं इस लोक संगीत में।

लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कलाकार हैं गीता पराग और साथी, इनके गाए मालवी लोकगीत आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, शादी ब्याह का मौसम है और ऐसे मौसम में वीरा अगर अपनी दुल्हन के लिए चुन्नी लेकर आए तो उसे इस लोक संगीत में कैसे

गीता पराग और साथियों के गाए मालवी लोकगीत आप सुन रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में, प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया जा रहा है। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और आतिथ्य के लिए जाने वाले मालवा की इस खुशबू के बारे में, जिसके लिए कहते हैं कि जहाँ का अन्न अन्न महके और मन मन चहके, वो है प्यारा मालवा, पानी पियो छान के और रहो मालवा में मान के। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

गीता परागुर साथियों के गाए मालवीय लोकगीत आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रूप कुमार राठौड़ की गाई गजलें सुगम संगीत के कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली गजल, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीत उस्ताद अमजद अली खां का है। प्रस्तुत है गजल, ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का कोई इरादा तो नहीं था।

गुलजार की लिखी गजलें, आवाज रूप कुमार राठौड़ की, और कार्यक्रम का नाम सुगम संगीत। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। इसी क्रम में सुनिए कार्यक्रम की अगली गजल, संगीत उस्ताद अमजद अली खान का।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं रूप कुमार राठौड़। लीजिए इनकी आवाज़ में प्रस्तुत है कार्यक्रम की अंतिम गज़ल। हर बात पे हैरा है, मूर्ख है, नादा है, मैं दिल से परेशान हूँ और दिल मुझसे परेशान है।

रूप कुमार राठौड़ और साधना सरगम की आवाज़ में ये थी कार्यक्रम की अंतिम गज़ल। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गाया राग तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उस्ताद करमतुल्ला खान। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गाया राग तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद करमतुल्ला खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से रिले होगी, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसके अंतर्गत आपने सुना भेंट वार्ता। पद्मश्री से अलंकृत वरिष्ठ प्रातात्विक डॉक्टर नारायण व्यास से अमिता त्रिवेदी की विशेष बातचीत। मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत महेश्वरी, वाचन स्वर दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा। उन्होंने किसानों से अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग न करने और मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायसेन जिले में कृषि के क्षेत्र में एक और अहम पहल की गई। कलेक्टर अरुण कुमार कर्मा की अध्यक्षता में जिले के कृषि रोडमैप को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि उद्यानिकी, पशुपालन और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कलेक्टर ने टाइम लिमिट बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों, सीमांकन, नामांतरण और लोक सेवा गारंटी के आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की फार्मर रजिस्ट्री 100% पूरी करने और ई विकास टोकन प्रणाली की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी रायसेन में बड़ा कदम उठाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने ग्राम सुरई से लगे वन क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। करीब 35 हेक्टेयर अतिक्रमण मुक्त भूमि पर 35,000 पौधे रोपे जा रहे हैं, जिनमें सागौन और मिश्रित प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। रायसेन के ऐतिहासिक किले की पहाड़ी पर इन दिनों बाघ का विचरण देखा जा रहा है। वन विभाग ने आम नागरिकों और मीडिया कर्मियों से किला पहाड़ी के आसपास न जाने की अपील की है। वन विभाग की टीम बाघ की लगातार निगरानी कर रही है। मानव वन्य प्राणी टकराव से बचाव के लिए सतर्क हैं। उप मंडलाधिकारी ने बताया कि वन्य प्राणी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप वन्य प्राणी अधिनियम का उल्लंघन है। मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण को लेकर भी जिले में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक अभय वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर रायसेन जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। जिले में 0 से 5 साल तक के 1,84,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय ने स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। रायसेन जिले के सभी नगरीय निकायों में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बेगमगंज और सिलवानी में शिविरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवेदनों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान

0: प्रदान करना और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना है। जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन 18 जून तक चल रही है। 10वीं पास विद्यार्थी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी तरफ जिले में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवक युवतियों को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रायसेन में 45 दिवसीय ये प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। जिले में 1 जून को रेडक्रॉस समिति द्वारा सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शिविर लगाकर गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाएं वितरित की गयी। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत जिला रायसेन द्वारा सिलवानी में साइक्लोथॉन और जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने साइकिल रैली में उत्साहपूर्वक भाग लेकर फिटनेस और हरित पर्यावरण का संदेश दिया। रायसेन जिले के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द ही खास ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल का मकसद है कि शिक्षक और कर्मचारी ये समझ सके कि यदि कोई विद्यार्थी मानसिक तनाव या अवसाद से गुजर रहा हो तो उसे समय पर पहचान कर मदद की जा सके। ये ट्रेनिंग 6 जुलाई को सरकारी कॉलेजों के लिए, 7 जुलाई को प्राइवेट कॉलेजों के लिए और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों के लिए ऑनलाइन आयोजित होगी। रायसेन जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत महेश्वरी का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का आरंभ।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: हेलो हेलो MH हॉटलाइन।
1: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को विजया जैन का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, हम हाजिर हो चुके हैं आपके लिए, आपकी पसंद के गीत सुनवाने के लिए। तो जल्दी से नंबर बता दें आपको, हमारे नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो दोस्तों, हम बिल्कुल तैयार हैं। और मेरा एक छोटा सा निवेदन है हमेशा की तरह हमारे सभी श्रोताओं से, कि जिन श्रोताओं ने हमारे इन कार्यक्रमों में एक बार कॉल किया है, वो कृपया थोड़ा सा अंतराल रखें, कम से कम एक महीने तक वो दोबारा फ़ोन न लगाएं, ताकि हमारे नए श्रोता भी हमसे जुड़ सकें और हम विविध रंगी बातचीत आपको सुनवा सकें। तो चलिए, आज गीतों का सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले कॉलर हमसे कौन जुड़े हैं। तो बिल्कुल जल्दी से मैं पहला फोन यहाँ पर उठाने वाली हूँ। हेलो हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, आप अगर आप रेडियो सेट के पास में हो तो रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाएं।
2: नहीं, दूर ही हूँ।
1: ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके। चलिए बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: कोटा राजस्थान से भूपेंद्र कुमार गुप्ता।
1: कोटा राजस्थान से भूपेंद्र कुमार मिश्रा जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
2: आज लाला रुख का सुना दो।
1: लाला रुख का कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
2: मोहम्मद रफी साहब की आवाज है, कली कली के लब पर।
1: अच्छा, मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये गीत हम आपको सुनवाएं। क्या करते हैं आप?
2: मैं सीनियर सिटीजन हूँ।
1: अच्छा, सीनियर सिटीजन है, ठीक है। मोहम्मद रफी जी का गाया हुआ एक गीत मुझे नजर आ रहा है, ये गीत सुनवा दूं मैं आपको?
2: हाँ, सुनवा दो मैडम।
1: चलिए, मेरी पसंद से सुनिए लाला रुख फिल्म का ये गीत, है ना। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद आपको।
1: हाँ जी, सुनिए।

0: हेलो हेलो एम एच होटलाइन।
1: जी हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू जी देवा से बात कर रही है। क्या करती हैं रानू जी आप?
1: मैम मैं हाउस मेकर हूँ।
0: मेरे ख्याल से आपसे मेरी बात काफ़ी बार होती
1: सेकंड
0: रहती है शायद, है ना?
1: काफी बार का तो नहीं
0: जी
1: पता,
0: जी
1: पर सेकंड टाइम हो
0: अच्छा
1: रही है
0: अच्छा
1: शायद
0: अच्छा
1: ऐसा।
0: चलिए,
1: हाँ
0: फिल्म का नाम और गीत के बोल बताएं सबसे पहले।
1: मूवी का नाम है हेट स्टोरी 3 और गाने के बोले बजा तुम हो।
0: ओके, आप गाना गाने सुनना पसंद करती हैं? गाती भी हैं क्या? गुनगुनाती भी
1: नहीं,
0: हैं?
1: गाने का शौक तो नहीं है, बट सुनने का मतलब
0: अच्छा, सुनने का
1: अच्छा
0: शौक है।
1: लगता
0: तो
1: है गाना
0: किस तरह की
1: सुनना।
0: मूवीज पसंद करती है? पुराने गीत पसंद करती हैं कि नए गीत पसंद करती हैं ज़्यादा?
1: न्यू सॉन्ग भी पसंद है, लेकिन 90s के सॉन्ग भी
0: अच्छा,
1: पसंद आते
0: नाइन्टीज़,
1: हैं।
0: कुमार सानू, अलका और इन सबको ज़्यादा सुनती हैं आप?
1: हाँ
0: क्या बात है। चलिए, आपकी पसंद का गीत मुझे मिल चुका है, तो आपको सुनवा दें आपकी पसंद का गीत।
1: ओके, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: विद्या जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू से। आप
0: अच्छा,
1: कैसी
0: महू से
1: हैं?
0: बात कर रहे हैं आप? ओके। कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मुझे आप सुनवा दें, फिल्म अर्धांगिनी का गीत है, लता जी की आवाज है और गाने के बोल हैं। तेरा खत लेके सनम, पाँव कहीं रखते हैं हम, ओ कहीं बढ़ते हैं कदम, कहीं
0: क्या बात है,
1: बढ़ते हैं कदम जी।
0: क्या
1: और
0: बात है, आप तो
1: विद्या
0: बहुत
1: जी
0: अच्छा गुनगुनाते हैं।
1: बस आपकी संगत का असर है,
0: नहीं
1: आपके
0: नहीं हमारी संगत
1: संग
0: नहीं है। तो एक्चुअली देखिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ गुण होते हैं और अगर हम इसे निखारे तो गुण बढ़ जाते हैं। आपने बहुत अच्छा मतलब गुनगुनाया, तो
1: मैंने
0: आपकी पसंद का
1: म्यूजिक
0: गीत मुझे मिल चुका है। आप कहें तो सुना दें।
1: जी, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा था कि
0: जी
1: मैंने म्यूजिक सीखा हुआ है और मैं आकाशवाणी भोपाल का कलाकार भी रह चुका हूँ।
0: अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जी मतलब
1: और
0: आकाशवाणी से बहुत पुराना
1: आपके
0: जुड़ाव है आपका।
1: जी, और
0: अच्छा
1: आप आपकी और हमारी बात ठंड में हुई थी
0: अच्छा क्या बात
1: जी,
0: है,
1: ओके
0: मतलब
1: जी
0: आप हमारे बहुत अच्छे श्रोता हैं कि पूरा अंतराल रख के हमसे बात करते हैं।
1: जी और मैंने गाना पसंद किया था, मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू ना जा,
0: अच्छा, अरे इतना भी याद है आपको,
1: तो
0: क्या बात है,
1: फिर
0: मौसम के अकॉर्डिंग गीत चुना था आपने। आज भी आपने बहुत अच्छा गीत पसंद किया है, तो चलिए मुझे गीत भी मिल चुका है आपका, और बिल्कुल एंजॉय करिए इस गीत को हमारे साथ और दूसरे श्रोताओं के साथ भी, है ना?
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो
1: ये मालूम पड़ता है वैसे।
0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं ग्राम उलझन जिला सीहोर केंद्रलाल परियार।
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? नाम बताइए अपना।
1: ग्राम उलझन से केंद्रलाल परियार बोल रहा
0: अच्छा,
1: हूँ।
0: गेंदालाल परिहार जी। तो
1: जी
0: परिहार जी, क्या करते हैं आप?
1: जी नहीं, मैं सिलाई काम है
0: अच्छा, सिलाई का काम है। ओके,
1: जी।
0: तो किस तरह के कपड़ों की सिलाई करते हैं आप? मतलब महिलाओं के कपड़े सिलते हैं या पुरुषों के कपड़े
1: नहीं,
0: सिलते
1: पुरुषों
0: हैं?
1: के सिलते हैं मैडम जेंट्स
0: अच्छा,
1: काम।
0: पेंट शर्ट और ये सब सिलते हैं आप?
1: जी, मेरे
0: ओके,
1: लड़के हैं
0: तो
1: दो, साथ में काम करते हैं। और जी
0: हाँ, तो और गीत भी सुनते हैं?
1: मैम,
0: ठीक है, तो आज कौन सा गीत आपको सुनवा दिया जाए?
1: जाने तो सुन के गाने आए
0: हाँ,
1: तेरे हाथों में पहना के छोड़े हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है! किसको सुनवा रहे हैं वैसे ये गीत आप?
1: नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं,
0: हाँ, नहीं, वाइफ को नहीं सुनवाएंगे?
1: भाई घर में काम कर रही है वो तो।
0: अच्छा नहीं,
1: मैं
0: अगर ये गीत आप
1: दुकान
0: पत्नी
1: बैठा
0: को
1: हूँ तो
0: डेडिकेट
1: सुनाओ
0: करेंगे
1: उसे।
0: ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगी।
1: नहीं, मेरी बहू भी है दो, में बड़े लड़के हमारे ना,
0: अच्छा, बड़े लड़के भी हैं। ठीक
1: पोते
0: है
1: भी
0: ठीक है।
1: हमारे।
0: अच्छा, आपके आवाज से ऐसा नहीं लगता है कि आप इतने बड़े हैं, मुझे ऐसे लगा कि आप काफी यंग हैं। मतलब
1: नहीं सर,
0: चलिए,
1: मैडम
0: अच्छी
1: ने मेरे
0: बात है,
1: को साढ़े
0: आपने खूब
1: पैंतालीस साल हो
0: मेंटेन
1: गए
0: किया
1: रेडियो
0: हुआ है
1: सुनते
0: खुद
1: हुए।
0: को।
1: मेरे को 45 साल हो गए रेडियो सुनते हुए
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो आप
1: जी।
0: जैसे श्रोताओं से भी, श्रोताओं से हमारा काम होता है और हमें भी अच्छा लगता है ऐसे श्रोताओं से बात करके। चलिए,
1: जी
0: आपके
1: जी
0: पसंद का गीत सुनवा दूं आपको, आपके पूरे
1: मैडम
0: परिवार
1: जी,
0: के साथ और आपके साथ में काम करने वाले लोगों के साथ। ठीक है,
1: धन्यवाद। ओके
0: ओके,
1: मैम।
0: धन्यवाद। लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार। एमएच हॉटलाइन में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: धन्यवाद मैडम। मैं दुबे के बगीचे से महेश रायकवार।
0: अच्छा, महेश जी दुबे के बगीचे से बात
1: जी
0: कर रहे हैं आप। तो
1: जी
0: महेश जी, कौन सी फरमाइश पूरी की जाए आज आपकी?
1: ओ, समझौता फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: कौन सा गीत है?
1: समझौता खामोश कर लो।
0: क्या बात है,

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार दोनों का गाया हुआ गीत है ये।
1: जी जी,
0: किसकी आवाज में सुना है आपको?
1: आप तो एक किसी की आवाज, लता मंगेशकर की आवाज में।
0: अच्छा, लता जी की आवाज में सुना देते आपको। तो महेश जी क्या करते हो आप?
1: मैं तो मैडम अपने गुजराती गेस्ट हाउस के अंदर हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: सर्विस करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आप जॉब में हैं, मतलब अभी ऑफिस में हैं कि घर में हैं?
1: 12 बजे से मेरी ड्यूटी है मैडम, 12 बजे।
0: अच्छा, 12 बजे से आपकी ड्यूटी है। तो
1: मेरा रेडियो चलता ही रहता है वहाँ पे भी।
0: अच्छा, वहाँ पे भी रेडियो चलता रहता है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है,
1: चलते ही रहता है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो कितनी बजे से, सुबह कितनी बजे से सुनना शुरू कर देते हैं आप रेडियो?
1: ये समझ लोगे आपका 6 बजे से चालू होता है, जब से चालू कर देता हूँ।
0: अच्छा, और रात के 11 बजे तक चलता है आपका रेडियो?
1: 11 बजे तक।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको तो बहुत मतलब एक्सपीरियंस हो गया होगा। और कितने सालों से सुन रहे हैं रेडियो?
1: अरे मैडम, जब से आपके वो नंदा जी बेरा जी का कार्यक्रम चल,
0: अच्छा, तब से सुन रहे हैं, मतलब बहुत पुराने श्रोता हैं आप हमारे।
1: जी, बहुत नियमित श्रोता हूँ।
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपके पत्र भी मिलते हैं हमें।
1: पत्र भी आते हैं मैडम।
0: जी जी जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपका वर्क क्या रहता है, क्या काम करते हैं आप?
1: मेरा प्यून का है मैडम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान रखने का, निगरानी करने का काम है।
1: जी जी जी,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी पसंद का गीत मिल गया है हमें, है ना? तो सुनवा दें आपकी पसंद का गीत।
1: जी जी जी, धन्यवाद।
0: चलिए, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, एमएच हॉटलाइन में आपका अभिनंदन। कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी, मैं यहाँ राजानगर देवास से राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आपका स्वागत है। थोड़ा सा रेडियो सेट अपने से दूर कर दीजिए, पीछे से आवाज आ रही है काफी।
1: धन्यवाद, बंद कर दिया है।
0: हाँ जी बिल्कुल, बंद कर देंगे तो आपसे अच्छे से बात हो पाएगी, है ना?
1: बंद कर दिया
0: जी जी जी बताएं, कौन सा गीत सुनवा दें आज आपको?
1: गीत

0: आपकी थोड़ी सी ना मुझे आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा फोन पास में रखिए और रेडियो से दूर हो जाइए आप।
1: इधर आ गया, मैं बाहर आ गया।
0: हाँ जी जी बोलिए।
1: प्रेम धवन साहब का जन्मदिन आज, जो महान गीतकार और संगीतकार है।
0: हाँ हाँ।
1: उन्होंने बहुत गीत बनाए, जैसे भक्ति गीतों भी बनाए और दिल में ये भी गीत बनाए, अच्छे अच्छे गीत बनाए हैं और संगीतकार भी है। तो उनका गीत है कि एक फूल दो माली,
0: एक फूल दो माली फिल्म का गीत है। कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये
0: राजू जी, मुझे आपकी आवाज सच में बहुत, मतलब गड़बड़ पीछे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो मुझे फिल्म समझ में आई है पर गाने के बोल आपने बताए हैं कि नहीं, ये भी अभी समझ में नहीं आए। अच्छा अच्छा, सैया ले गई जिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। राजू जी जी जी जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा रेडियो से दूर करके बात करें, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आती है पूरी बात। फिर चलिए, फिलहाल मुझे आपका गीत मिल चुका है और मैं आपकी फरमाइश पूरी करती हूँ और सुनवाती हूँ आपकी पसंद का ये गीत, है ना?
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: हेलो,

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और श्रोताओं, एक बार फिर आपको नंबर बता देते हैं, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहें तो हमारे नंबर हैं 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731। और मेरा सभी श्रोताओं से एक निवेदन है कि जब आप हमसे बात करें तो अपना रेडियो सेट थोड़ा दूर रखें, और आप भीड़ भाड़ वाली जगह से या जहाँ पर शोर हो ऐसी जगह से थोड़ा अलग आकर हमसे बात करें, ताकि आपकी और हमारी बातचीत श्रोताओं तक अच्छे से पहुंच सके और हम आपकी पसंद बहुत अच्छे से पूरी कर सकें। तो चलिए एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में अब देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: अरे दीदी नमस्ते।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: अरे आपके नियमित श्रोता भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर गंजवासोदा जिला विदिशा।
0: भागचंद साहू जी बात कर रहे हैं। भागचंद जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दीदी गीत सुनना है हमें, फिल्म का नाम है इतिहास।
0: इतिहास का गीत है, बिल्कुल।
1: और गाने के बोल रहेंगे जो

0: आपने दिल भर से होने लगी है मोहब्बत, मोहब्बत को रोने लगी है।
1: क्या बात है, क्या बात है। भागचंद जी एक बात बताइए कि क्या करते हैं, मतलब हमारे बहुत सारे श्रोता हमसे शिकायत करते हैं कि उनके फोन नहीं लगते हैं, और कुछ हमारे श्रोता हैं जिनके हमेशा फोन लग जाते हैं, तो आप लोग कोई स्पेशल टेक्निक अपनाते हैं कि क्या करते हैं, या आपका प्यार इतना ज्यादा है कि फोन हमेशा लग जाता है, क्या बात है?
0: नहीं दीदी, क्या है, आकाशवाणी इंदौर से हमारा इतना प्रेम है कि जब भी हम कॉल लगा जब भी लग जाता है।
1: क्या
0: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दीदी, हम कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरे टाइम कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करो तो हार बिल्कुल नहीं होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम हमारे सभी दूसरे श्रोताओं से भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका फोन ना लगे तो आप निराश मत होइए, बिल्कुल कोशिश करते रहिए, आपका फोन जरूर लगेगा और आपकी हमसे बात जरूर होगी। चलिए, मुझे आपका गीत मिल चुका है भागचंद साहू जी, तो आपकी पसंद पूरी करवा देते हैं। हाँ जी,
0: हाँ दीदी, दीदी कैसी हो आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है दीदी, पानीपुरी सेंटर का।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पानीपुरी चखने जरूर आएंगे, खाने जरूर आएंगे, जब भी उस एरिया में आना हुआ।
0: क्रम में लगे हुए थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो फिलहाल आप गीत सुनिए और बिल्कुल हमारे जो दूसरे आपके ग्राहक आते हैं उन्हें पानीपुरी खिलाइए। अभी
0: हम एक बात और कहना चाहते हैं, बच्चों की स्कूल खुलने का टाइम हो रहा है
1: जी,
0: तो जी आजकल बच्चे के यहाँ टच वगैरह मोबाइल चला रहे हैं, ऐसा मत करें, ज्यादातर उन्हें मोबाइल की लत से दूर रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत अच्छी बात कही है, और मोबाइल से दूर रखना ही चाहिए।
0: बिल्कुल, और माता पिता ध्यान भी नहीं देते कि हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं।
1: सही बात है,
0: बिल्कुल पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, देश का विकास अगर करना है।
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे श्रोता आपकी बात सुन रहे होंगे और ध्यान रखेंगे इस बारे में।
0: और दीदी हम तो सभी आकाशवाणी केंद्रों से जुड़ा हूँ, लखनऊ कहीं भी आकाशवाणी केंद्रों
1: में बिल्कुल बिल्कुल
0: रहते हैं, वो सुझाव को सुझाव भी साझा करते रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और सभी को इस पर अमल भी करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो चलिए, आपकी बात सारे श्रोताओं तक पहुँच गई है।
0: दीदी हम एक नाम ले सकते हैं?
1: हाँ हाँ बोलिए बोलिए।
0: हमारे नाम है सन्नी शर्मा जी है, राजेश साहू जी मालथोन से।
1: जी जी जी
0: है, और नरेश साहू जी है।
1: ठीक है
0: बिल्कुल दीदी जी,
1: तो चलिए आपने जिन जिन श्रोताओं के नाम लिए हैं उन सबको, आपको और आपके पूरे परिवार को ये सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
0: ठीक है दीदी, नमस्ते।
1: नमस्ते, धन्यवाद।

0: हेलो हेलो, एमएच
1: जी
0: हॉटलाइन।
1: हेलो जी, विजया जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? आप
1: मैं अरविंद अग्रवाल
0: कहाँ से बात कर रहे हैं अरविंद जी?
1: जी, श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश जी।
0: अच्छा, अरे बाप रे, बहुत दूर से बात कर रहे हैं आप तो। क्या बात है, क्या करते हैं अरविंद जी आप?
1: जी मैं किराना की दुकान की हूँ, वहीं बैठ के आपको सुनता हूँ।
0: अच्छा, किराना की दुकान है आपकी। तो कौन सा गीत है आज आपका? हाँ
1: जी फिल्म का नाम रहेगा खुद्दार।
0: हाँ
1: गाने के बोल हैं, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं।
0: अरे वाह, बहुत ही सुंदर गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है। किसको सुनवा रहे हैं ये गीत आज?
1: आपके लिए खास।
0: ओहो, नहीं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि आपने अपने घर में किसी को डेडिकेट किया है ये गीत।
1: नहीं, घर में
0: चलिए
1: किसी को
0: चलिए,
1: नहीं।
0: कोई बात नहीं, आप जिसके लिए भी सुनवा रहे हैं, वो बहुत प्यारा गीत है। तो चलिए, आपकी पसंद का गीत मिल
1: वो अभी
0: चुका
1: बात
0: है।
1: कर चुके हैं पहले
0: हाँ जी,
1: वो अभी बात कर चुके हैं पहले जी
0: अच्छा, चलिए मैं सुनवा दूँ आपकी पसंद का गीत।
1: थोड़ा
0: ओके जी,
1: ज्यादा बजा देना, आप बहुत कम बजा रही हैं आज।
0: हाँ जी, सबकी शर्माइश पूरी करनी पड़ती है ना सर, इसलिए
1: जी
0: चलिए सुनवा देते हैं।

0: एमएच हॉट लाइन में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं? गुमाश्ता नगर से अनिल कौचाले जी बात कर रहे हैं। अनिल जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज? एक्चुअली थोड़ा सा अनिल जी रेंज में आके बात करिए, आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है। हाँ हाँ, मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक से नहीं सुनाई दे रही है, अब बोलिए। चांद से पर्दा कीजिए। ओके, कुमार सानू का गाया हुआ गीत है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और छुट्टी है, दूसरा शनिवार हमको फोन लगाने का टाइम देखा, नहीं तो फोन
0: हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि जो नियमित श्रोता हैं और जिन्हें जो कभी कभी फोन करते हैं और हमारी बात भी ध्यान रखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके। हाँ, एक्चुअली हम देखिए, हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि सभी श्रोताओं को मौका मिले बात करने का, क्योंकि ये प्रोग्राम अब लगभग तकरीबन रोज आता है ना। तो श्रोताओं को खुद ही समझना चाहिए, हम रोज रोज मना करें तो भी अच्छा नहीं लगता है।
1: हाँ जी, लेकिन अगर जो लोग नहीं सुनते हैं उनको एक बार थोड़ा आपको मना करना ही पड़ेगा।
0: हाँ सही बात है, कोशिश करते हैं पर कई बार श्रोता नहीं मानते, नाराज भी हो जाते हैं, तो फिर खुद से समझना चाहिए। वैसे पर देखिए, अगर आप वैरायटी रखेंगे तो आपको भी कार्यक्रम सुनने में मजा आएगा, है ना? तो चलिए अनिल जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बड़ा इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, और आपकी पसंद का गीत भी मुझे मिल चुका है, सुनवा दूं आपकी पसंद का गीत? अनिल जी, आपकी आवाज ना सच में ठीक से नहीं आ रही है, सुनाई नहीं दे रही है मुझे। चलिए मैं गीत सुनवा देती हूँ, आपसे बातों का सिलसिला आगे बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, है ना? ओके जी, ओके।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। धन्यवाद
0: गुड मॉर्निंग। एमएच हॉटलाइन में आपका अभिनंदन है। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। मैं श्रीपाल गोयल दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैम।
0: श्रीपाल गोयल
1: जी दिल्ली से मैम,
0: दिल्ली से बात कर रहे हैं। श्रीपाल जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: फिल्म का नाम मर्डर और गाना है
0: मर्डर।
1: कहो ना कहो यहाँ से बोलती हैं
0: ओके, तो श्रीपाल जी क्या करते हैं दिल्ली में आप?
1: मैम। दिल्ली में काम करते हैं, एक प्राइवेट कंपनी में अपना काम है।
0: अच्छा, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं आप।
1: हाँ जी मैम,
0: ओके, तो क्या टाइमिंग रहते हैं आपके जॉब के?
1: सुबह 10 से 6 बजे तक
0: अच्छा,
1: अभी काम पे
0: और
1: ही ऑफिस में।
0: परिवार के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं?
1: नहीं मैम, डेली जो है ट्रेन से जाते आते हैं,
0: अच्छा,
1: हरियाणा
0: ट्रेन
1: से
0: से
1: हैं मैम।
0: जाते आते हैं। ओके
1: हाँ जी, हमारा
0: ओके
1: पास ही
0: ओके,
1: है हरियाणा बॉर्डर पे ही, तो
0: अच्छा,
1: ट्रेन से
0: ओके
1: ट्रेन कब डाउन।
0: ओके ओके ओके ओके, चलिए अच्छी लगा। मेरे ख्याल से आपसे पहले भी बात हो चुकी है।
1: जी जी शायद मैम।
0: हाँ जी हाँ जी, चलिए श्रीपाल जी, आपकी पसंद का गीत सुनवा दें आपको।
1: ओके मैम, हाँ जी, धन्यवाद
0: ओके
1: आपका।
0: थैंक यू।

0: हेलो।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। एमए छोट लाइन में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरण वर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंतमल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: अच्छा, जयपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं आप।
1: जी मैडम।
0: कौन से गीत सुनेंगे आज?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है मन चली और गाने के बोले गम का फसाना बन गया था।

0: क्या बात है, क्या करते हैं आप जयपुर में?
1: जी मैडम, हम यहाँ खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं। तो जयपुर से कितना दूर पड़ता है आपका गांव?
1: जी मैडम, जयपुर से हमारे यहाँ 40 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा, जयपुर से 40 किलोमीटर दूर है। तो अभी अभी आगामी सीजन की क्या तैयारी चल रही है खेतों में?
1: सीजन की यही तैयारी चल रही है मैडम, अभी खेतों की जैसे सफाई हो रही है, और जो पिछले फसल बाए थे उसको जो पड़ा था उसमें जो कूड़ा कचरा था उसको उठा रहे हैं, साफ करके खेतों में बुआई का।
0: अच्छा, तो जो पुरानी फसल का कूड़ा कचरा होता है उसको क्या करते हैं?
1: जी मैडम, उसको पुराने कूड़ा कचरा को ये करते हैं कि हमारे जैसे कोई अगर उसका चारा होता है या फिर नहीं तो उसको क्या करते हैं, हम घर पर ले आते हैं और उसको खाना बनाने के लिए जो उसको चूल्हा उला में जला।
0: अच्छा, चूल्हा जलाने की यूज करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और जो खाने लायक चारा है या घास फूस है वो गाय और भैंसों को डाल देते हैं?
1: हाँ, जो वो खाने का होता है वो गायों को भैंसों के लिए बचाने के लिए
0: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बारिशों में बड़ा काम आता होगा ये सब।
1: जी मैडम।
0: चलिए, अच्छी बात है, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। पहली बार फोन किया है क्या आपने?
1: जी मैडम, मैं आपका कार्यक्रम में पहले भी किया था, मुझे शुरू में कार्यक्रम चला था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। चलिए, आपका गीत भी मुझे मिल चुका है मंचली फिल्म का, तो आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं जल्दी से, है ना?
1: थैंक यू मैडम।
0: ओके जी, थैंक यू।
2: क्या हुआ?
3: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
2: अच्छा जी,
3: एक बहाना बन गया अच्छा।
2: अच्छा,

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: अभी आप सुन रहे थे एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सवेरे के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, बात आपके गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। मैं हूं आज आपके साथ आकांक्षा। तो आज दिल की बात जरा खुलकर होगी मेरे साथ। श्रोताओं हम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं। कभी मम्मी पापा की उम्मीदें, कभी बॉस की डांट को संभालना, तो कभी अपने जीवन साथी या दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान लाना। पर इन सब के बीच एक इंसान कहीं पीछे छूट जाता है। जानते हैं वो कौन है? वो हैं हम खुद। अक्सर जब हम अपने लिए वक्त निकालते हैं या खुशी की बात करते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही? तो आज हमारे इस फोन इन प्रोग्राम का सीधा सा सवाल ये है कि क्या आप अपने आप को खुश रखते हैं? क्या आपका खुश रहना जरूरी है? क्या आप भी अपनी खुशियों को दूसरों के चक्कर में पोस्टपोन करते आए हैं? तो उठाइए फोन और लगाइए नंबर। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो आपके कॉल्स का हमें है इंतजार। हेलो नमस्कार।
3: हाँ नमस्कार, फोन करे गीत सुने?
1: जी नहीं, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
3: जी नमस्ते
1: जी, तो अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं आप?
3: हाँ जी, मैं ग्राम कन्या विकास खंड बिरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से ध्रुवाराम साहू बात कर रहा हूँ।
1: साहू जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छे हैं, बस खेती किसानी काम कर रहे थे।
1: अच्छा,
3: सोचे आज कार्यक्रम में कॉल कर लिया जाए करके, लग भी गया कॉल।
1: साहू जी आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कितना जरूरी है अपने आप को खुश रखना, तो आप बताइए आप अपने आप को खुश रखते हैं?
3: बिल्कुल, रखने के लिए सबसे ज्यादा तो ये है कि जितनी हमारी जो इच्छा है ज्यादा ये नहीं करते अपन, ज्यादा इच्छा नहीं रखते, क्योंकि इच्छा दुख का कारण होता है और जितना हो सके व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं।
1: जी,
3: और क्या है, खाली पीली रहोगे तो क्या तनाव उत्पन्न होता है।
1: जी,
3: तो खुश करने के लिए क्या है, जो प्राकृतिक दिनचर्या है
1: जी
3: उसके हिसाब से जीने का प्रयास करते हैं। जैसे सुबह प्रातः काल उठ जाना, अपने जो दैनिक काम है उसमें लगना, बस और सब सबके साथ मिलजुल कर रहना, यही है अपना खुश रहने का मूल मंत्र।
1: वो तो बहुत सही बात कही आपने, लेकिन आपने कहा कि आप ज्यादा इच्छाएं नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों? जब तक हम इच्छा नहीं,
3: मैडम जी कभी कभी क्या है, इच्छा रखोगे और इच्छा पूरा ना हो
1: जी
3: तो दुख होता है, और जब दुख होता है गुस्सा आता है तो गुस्सा आने के लिए हम दूसरे गलती करते हैं तो सजा अपने आप को देते हैं, और दुख का कारण यही होता है।
1: हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख तकलीफ तो होती है, लेकिन इच्छाएं रखेंगे तभी तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा तो जरूरी है, और इच्छा ऐसा है कभी पूरी होने वाला ही नहीं है।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब देखिए सुनिए ना,
3: होती है होने के लिए, इच्छा जिसकी पूरी होती है दूसरी इच्छा अपने आप जन्म ले लेती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात हो रही है अपने आप को खुश रखने की इच्छा की। कि अब कई बार हम जैसे अपनी पसंद की फिल्म देखने के लिए मान लीजिए बैठ जाते हैं, और बस थोड़ी देर चुपचाप बैठना है, चाय पीना है, और खुशी तो हमें मिलती है ना कि हाँ हम अपने पसंद का काम कर रहे हैं, सारी चिंताओं से दूर होके हम अपनी पसंद का काम करेंगे तो हम तो खुश होंगे, है ना? तो इसीलिए ये भी तो हमारी एक इच्छा है। मान लीजिए आज आप सोच रहे हैं आज मुझे मूवी देखना है, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है, लेकिन आप वो सोचा तो आपने, इच्छा तो की कि मुझे देखना है, तो एक ना एक दिन आप अपने लिए समय निकाल लेंगे।
3: हाँ,
1: है ना? तो देखिए छोटी छोटी सी खुशियां
3: बहुत जरूरी है
1: जी,
3: खुश रखने के लिए क्या है, भाग दौड़ के साथ साथ कुछ छोटी मोटी जो खुशियां हैं
1: बिल्कुल
3: उसको अपने आसपास सहज कर ही रखना चाहिए
1: जी। तक आप
3: कमाने के लिए इतने भागते हैं
1: जी,
3: और धन धन कहते हुए इंसान कब निधन हो जाता है पता ही नहीं चलता है
1: जी,
3: इसलिए छोटी छोटी खुशी,
1: देखिए छोटी छोटी खुशियां ही बहुत बड़ी खुशियों का मूल आधार होती हैं।

0: है ना, आप अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों से खुश होंगे, अपने परिवार के साथ समय जब हम बिताते हैं वो भी एक बहुत बड़ी खुशी होती
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: ना, जीवन साथी को, बच्चों को, जब हम उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, उनको देख के हमें भी बहुत खुशी होती है।
1: हाँ सही बात है, उनकी खुशी में हमारी खुशी होती है।
0: जी बिल्कुल
1: और खुशी तो क्या है, मिलजुल के बांटने का ही काम है।
0: बिल्कुल, तो जब आप खुश रहेंगे तभी तो आप खुशियां बांटेंगे, आप
1: हाँ
0: तकलीफ में होंगे तो
1: बिल्कुल
0: आप किसी को खुशी नहीं दे पाएंगे,
1: सही बात, सही बात है
0: है ना। तो इसीलिए जीवन मिला है, सुख दुख लगा रहता है साहू जी, लेकिन
1: बिल्कुल
0: उसमें
1: बिल्कुल
0: ही कुछ समय हमें अपने लिए निकालना है, अपनी खुशी के लिए निकालना है, जिसमें आपको सुकून मिले, आप खुश रहें, ऐसा काम भी कीजिएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: जी नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है, अपना परिचय दीजिए।
1: राम नरेश बोल रहा हूँ मैं, कटारिया सीढ़ी जिला राजगढ़ से।
0: नरेश जी,
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं।
0: ठीक हैं। आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हम
1: जी
0: बात कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है अपने आप को खुश रखना, और क्या आप अपने आप को खुश रखते हैं?
1: खुश रखने की कोशिश तो हर एक मनुष्य करता है।
0: जी
1: वह प्रसन्न रहे, और प्रसन्नता तभी आएगी यदि वो स्वास्थ्य उसका ठीक है,
0: बिल्कुल,
1: या धन की दृष्टि से वो सक्षम है, या फिर अपने काम से वो प्रसन्न है जो काम वो करता है।
0: जी
1: भले वो कृषि का करता हो या कोई भी किसी प्रशासनिक सेवा में काम करता हो, अगर उन सब क्षेत्रों से वो खुश है तो खुश है, प्रसन्न है।
0: बिल्कुल।
1: और खुश रखने के लिए बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पसंद का खाना खाते हैं,
0: जी
1: बहुत सारे लोग किसी की सेवा करने में प्रसन्नता रखते हैं,
0: जी
1: बहुत सारे लोग जो है ऊपर जाते हैं, घूमने जाते हैं, बहुत सारे हिल स्टेशन पे जाते हैं, पर्यटक स्थल होते हैं वहाँ जाते हैं ताकि उन्हें खुशी मिले, वह प्रसन्न हो,
0: जी
1: या दूसरे की सहायता करने में वो अपना प्रसन्नता खुशी देखते हैं, प्रसन्नता देखते हैं।
0: आप किस में खुशी देखते हैं अपनी? आपको किस बात से खुशी होती है, किस काम से खुशी होती है? अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या करते हैं?
1: हम अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा म्यूजिक सुन लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: संगीत सुन लेते हैं।
0: जी
1: हमारे जो विद्वान हैं जो, और जो वो ये कहते हैं कि म्यूजिक थेरेपी,
0: बिल्कुल है ही, म्यूजिक बहुत अच्छी थेरेपी है आपको मानसिक शांति पहुंचाने के लिए। सुकून मिलता है उसको जब हम सुनते हैं तो।
1: ये संगीत है, जैसे बहुत सारे लोग जैसे काम का बोझ होता है उनके ऊपर, तो वो क्या करते हैं कि अपनी पसंद का कोई सीरियल देखते हैं, या कोई फिल्म देखते हैं,
0: जी,
1: या फिर कोई गीत सुनते हैं अपनी पसंद के सिंगर का।
0: जी देखिए, खुश रहने का सबसे बड़ा फायदा तो हमारा यही है कि जब हम खुश रहते हैं तो हम तनाव फ्री हो जाते हैं, है ना? इससे हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो जाते हैं हम।
1: हाँ, स्वस्थ हो जाते हैं। और कई बार वो कहते हैं ना कि एक चीज से हम, जैसे कोई भी किसी भी चीज पर हम काम कर रहे हैं या किसी चीज की चिंता है, जिससे थोड़ा विराम ले लिया जाए,
0: जी
1: थोड़ा हमें थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए और फिर से नई एनर्जी के साथ में,
0: जी
1: और फिर उस चीज को और बारीकी से देखा जाए,
0: जी
1: तो हम कुछ ना कुछ उसका समाधान निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। क्योंकि जब लगातार हमारे दिमाग पर जोर पड़ता है किसी काम का, वो थोड़ा बुद्धि जो है काम करना थोड़ा कम कर देती है, तो हमें खुश होने के लिए, दोबारा से रिफ्रेश होने के लिए हमें एनर्जी आ जाए, ताकि हम उस चीज को बड़े आराम से उस चीज को देखकर करें।
0: और ये छोटी छोटी सी चीजें ही, हमारी हॉबी, म्यूजिक या वॉक करना भी, ये हमें तुरंत खुशी दे देते हैं।
1: या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई परिजन है,
0: जी,
1: या हमारी कोई बहन है, बेटी है, मित्र है, दोस्त है, हम उससे बातचीत करने से प्रसन्नता महसूस करते हैं, तो 2 मिनट उनसे बातें करें।
0: जी आपको बात बताना बोलना चाहूंगी नरेश जी कि जब, जैसे अभी आपने परिवार या कोई साथी की बात की कि उनसे हम बात कर सकते हैं, तो इससे हमारे रिश्तों में भी मजबूती बनती है, है ना? कोई भी हमारे परिवार का सदस्य, अगर हम उससे खुलकर बात करते हैं तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं, हमें खुशी तो मिलती ही है। तो एक पंथ दो काज वाली ये बात हो जाती है।

0: लेकिन आज के जमाने में जिस आधुनिक युग में
1: जी
0: लोग इस तरह का काम बहुत ही कम कर पाते हैं, तो काम में इतनी व्यस्तता होती है या फिर कई बार फोन लगाना या संपर्क करना अपने दूर के रिश्तेदारों से, तो वो कोई काम होता है तभी इस चीज के लिए संपर्क किया जाता है, ये देखा गया है
1: जी। ये तो व्यस्तताएं बढ़ गई है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें खुद भी आगे बढ़ना होगा। हमारे चाहने वाले या हमारे परिवार के सदस्य या कोई भी दोस्त है, अगर वो हमें नहीं कर पा रहा तो हमें इनिशिएटिव लेना होगा, हमें बात करनी होगी। और एक बार अगर ये सिलसिला हम चालू कर देंगे तो आप देखिएगा दोबारा उनका कॉल, उनसे बात हमारी ज़रूर होगी।
0: और एक बात आपने खुशी की बात कही, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा मित्र या दोस्त हमसे नाराज है
1: जी,
0: और यदि उसका पसंद का कोई हम चीज ले जा सकते हैं, चाहे मिठाई हो सकती है चाहे कुछ खाने की चीज हो सकती है, यदि वो नाराज है और वो चीज उसको दी जाए और बड़े अच्छी तरह से प्रस्तुत की जाए, हो सकता है वो उस चीज को खाकर थोड़ा नाराजगी
1: दूर हो जाएगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अगर आप जानते हैं उनकी पसंद क्या है और आपने उनकी पसंद की चीज़ या कुछ भी आप मिलने ही चले गए, वो खुश हो जाएंगे और नाराजगी सारी एक तरफ
0: हाँ हो जाएगी, और उस बीच से हम सॉरी भी कह सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं, तो सॉरी आपका काम करेगा और वो व्यक्ति आपको माफ।
1: नरेश जी बहुत बढ़िया बात आपने ये कही है, हमारे सारे श्रोता सुन रहे होंगे तो वो जानेंगे कि देखिए हाँ ये भी एक पहल है जो हमें अपनी तरफ से कर लेनी चाहिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी। बहुत अच्छी बात आपने कही है नरेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने फोन किया, इतनी अच्छी बात की, उसके लिए धन्यवाद।

0: नमस्कार
1: नमस्ते,
0: जी।
1: नमस्कार। कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
0: जी आदरणीय, इसका होने के नाते आपका भी स्वागत करता हूँ। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किन से हमारी बात हो रही है, हम जान सकते हैं?
0: बिल्कुल, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं जय नरसिंहदेव, FM रेडियो ग्रुप, ग्राम करकबेल, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर से कमलेश का हार बात कर रहा हूँ जी।
1: कमलेश जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और बहुत अच्छे श्रोता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
0: थोड़ी सी हंसी मैम इसलिए आ गई, मुझे आपने बोला कि बहुत अच्छे श्रोता
1: मैं
0: है
1: है ही
0: तो हो सकता है मैं हूँ।
1: हो सकता है नहीं, आप हैं। आप किसी भी बात पर बहुत अच्छे से अपने विचार रखते हैं, खुलकर बात करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है।
0: मैम जी, मैं तो ये कहूंगा कि मैं ज्यादातर फोन इसी में लगाता हूँ जिसमें विचार रख सकूँ अपने।
1: तो आज विचार रखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या अपने आप को खुश रखना जरूरी है, और आप अपने आप को कैसे खुश रखते हैं ये भी हमें बताइए।
0: देखिए मैम जी, दिशा बहुत अनुकूल है, सभी से मेरा अनुरोध है और मैं भी अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे पहले तो रेडियो सुनता हूँ, और ग्राहक बंधु जो आते हैं दुकान पर मेरी मेरी चाय नाश्ते की दुकान है तो
1: हाँ,
0: उनके माध्यम से खुश हो लेता हूँ। रेडियो सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं,
1: बढ़िया।
0: एक माध्यम होता है मैम जी खुश कहीं ना कहीं अपने आप को रखने का। तो मेरा आग्रह सभी से, सभी श्रोताओं से है कि अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ऐसा काम करते रहिए जिसमें कि आप खुश रहें और आपको देख कर दूसरे भी खुश हो जाएं। जैसे एक उदाहरण दूंगा मैम जी, मैं
1: जी बताइए।
0: यदि नन्ना सा बच्चा होता है, यदि मुस्कुराता है वो दूर से, तो आपको जरूर मुस्कुराहट आएगी और आप भी हंसेंगे थोड़ा बहुत।
1: बिल्कुल, आपकी बात सुन के हमें वो चित्र दिख रहा है मुस्कुराते हुए बच्चे का, और मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट ही है।
0: तो मैम जी, वो नन्हे बच्चे की अपेक्षा यदि हम सामान्य व्यक्ति जो समझदार है सचमुच में,
1: जी
0: और किसी के मुस्कुराने से हो सकता है वो नाराज हो जाए, क्यों मुस्कुरा रहा है मुझे देख करके, ऐसी बात है। तो मेरी पहलू दोनों तरफ है मैम जी, नन्हे बच्चे को देखकर आप वो मुस्कुराता है, यदि आपको नहीं भी देख रहा है तो आपको मुस्कुराहट आ जाती है, आप हंसी आ जाती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति मुस्कुराता है जो समझदार है, यदि आपको देखकर मुस्कुराता है तो थोड़ा बहुत तो मैं एक कह सकते सवाल उठता है कि मुझे देखकर ये क्यों
1: नहीं,
0: मुस्कुरा रहा हूँ।
1: देखिए, इसमें यही बात है ना कि सोच का फर्क पड़ता है। अगर
0: जी
1: नकारात्मक सोच होगी तो ये देखकर मुझे क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन अगर
0: जी
1: पॉजिटिव सोच है या किसी ने आपको देख के मुस्कुराया तो सामने वाला भी आपको देख के मुस्कुराएगा।
0: और अंततः यह कहूंगा कि अधिकतर काम यदि हम मुस्कुरा कर करेंगे तो वो काम में भी आसानी होगी और सामने वाले का मन भी अच्छा रहेगा। तो बस यही कहेंगे, अपने आप को मुस्कुराने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए एक ऐसा वातावरण बनाइए जिससे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जलवायु, अग्नि, आकाश सभी मुस्कुराते रहे आप वो देख कर कि ये व्यक्ति आ गया, अब मेरा संरक्षण भी होगा और मैं इसके साथ संरक्षित भी हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, खुद की देखभाल करना, खुद को खुश रखना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी भावनाओं की इज्जत इसमें हम करते हैं। अगर हम थके होते हैं तो कभी हम आराम करते हैं, कभी-कभी बेवजह ही तनाव से बचने के लिए, जैसे आपने कहा, हम संगीत सुनते हैं, है ना। म्यूज़िक आपका, रेडियो आपके साथ रहता है, चलता रहता है। हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुश रखेंगे,
0: जी जी
1: है
0: कुछ
1: ना।
0: ना कुछ बजाय तो हमें खोजनी चाहिए मैम जी अपने आप को खुश रखने के लिए, चाहे रेडियो हो या अन्य बात है।
1: जी, सीधा हमारी सेहत पर इसका असर पड़ता है। अगर हम तनाव में रहते हैं तो ना हम अपने आप को खुश रखते हैं, ना परिवार को खुश रख पाते हैं।
0: जी,
1: जी
0: और ज्यादातर मैं तो यही कहूंगा, यही कोशिश रहनी चाहिए कि ज्यादातर मुस्कुरा कर बात करें।
1: देखिए, अभी आपके मुस्कुराहट के साथ हंसी भी आई है, इसका मतलब आप खुश हैं।
0: और
1: आप खुश हैं कि आपका फोन लगा, आपने हमसे बात
0: भले
1: की।
0: भले मैम जी, भले बनावटी मुस्कुराहट हो लेकिन मुस्कुराहट होनी चाहिए ताकि आपको देख करके दूसरे भी मुस्कुराहट या खुश हो सके।
1: कमलेश जी, बनावटी मुस्कुराहट नहीं होना चाहिए, मुस्कुराइए तो दिल से मुस्कुराइए। देखिए, कहीं ना कहीं वो बनावटी मुस्कुराहट या खुशी समझ में आ जाती है कि ये देख के हमें खुश नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती ये हंस रहे हैं, खुशी दिखा रहे हैं कि मुझसे मिलके उनको अच्छा लगा।
0: आप हमें खुश रखने के लिए, सभी श्रोताओं को खुश रखने के लिए यदि थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके माध्यम से रेडियो पर आपकी भी आ जाए तो हम लोग सचमुच में खुश हो जाएंगे, भले ना दिख रही हो लेकिन मुस्कुराहट आपकी
1: नहीं
0: आनी
1: नहीं
0: चाहिए मैम
1: हमारी
0: जी।
1: तो आ ही गई। आपने इतनी अच्छी बातें की हैं कि सुनने वाले सभी श्रोता श्रोता अभी मुस्कुरा रहे होंगे और वो खुश होंगे। तो हमें अपने को भी खुश रखना है। दूसरों की खुशी तो मायने रखती है, लेकिन हमें हमारी खुशी का भी ध्यान रखना है। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम जी आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग करते हैं और प्रसारित करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: कामी नारी प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर रहु प्रिय लागो मुही राम। नमस्कार बहन जी।
0: नमस्ते, स्वागत है आपका।
1: जी बहन जी, आपका नाम जानना चाहूंगा।
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ, और आप कौन बोल रहे हैं ये भी बता दीजिए।
1: ये मैं बोल रहा हूँ ग्राम बहेरी जिला बांदा चित्रकूट धाम के से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ।
0: दिनकर सिंह जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हुए
1: जी। और आपसे ये बहुत जल्दी दोबारा जो है बात होके हो रही है, तो इससे भी मुझे बहुत खुशी मिल रही है। दीदी जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको खुशी मिल रही है।
1: आपका तरीका जो है वो सबसे कुछ हटके है दीदी जी, जो है
0: धन्यवाद।
1: मैं विषय वस्तु जानना चाहूंगा।
0: देखिए, आपने

0: खुशी हमें दी, और आज बात भी खुशी की ही है कि कितना
1: बिल्कुल
0: जरूरी
1: बिल्कुल
0: है अपने आप को खुश रखना। क्या आप
1: बिल्कुल
0: अपने आप को खुश रखते हैं?
1: जी बिल्कुल, जो है प्रयास तो यही करते हैं। जब कभी किसी टेंशन में होते हैं तो कहीं बाहर घूमने जाते हैं या दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, तो अपने आप को खुश रखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि किसी तरह अगर हम आउट ऑफ या रॉन्ग साइड में पहुंच गए हैं और हमारा मन दुखी है किसी कारणवश, तो उसको हम फिर पुनः पटरी पे लाने के लिए कुछ जरूर नए नए तरीके खोजते हैं और उसमें सफल भी होते हैं।
0: बहुत बढ़िया, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसा करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है दिनकर जी, कि
1: जी
0: हम अपनी व्यस्तताओं में इतने उलझ जाते हैं कि चाहते हुए भी हम समय नहीं निकाल पाते हैं। हम तनाव
1: बिल्कुल
0: में रहते
1: बिल्कुल
0: हैं, खुशी डिजर्व कर रहे हैं कि हाँ हमें खुश होना है, लेकिन हम अपनी खुशी का काम नहीं कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी दीदी जी आदमी इतनी व्यस्तता के कारण और कभी इतना टेंडम टेंशन में होता है कि उसकी नींद तक गायब हो जाती है,
0: जी
1: और उसे पाने के लिए अगर आपको एक मैं थोड़ी कहावत बताऊंगा
0: जी बताइए।
1: कि अगर अपने साथ आ जाए, अगर अपने साथ आ जाए तो दुख हो जाता है आधा, और जीवन में अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जीवन में नहीं आती कोई बाधा।
0: वाह क्या बात है।
1: तो इस तरह से अपने यानी अपने जो मित्र हैं रिश्तेदार हैं अगर उनके पास हम जाएंगे तो हमारे सिचुएशन बताएंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो आपकी जो नींद गायब हो गई है वो पुनः आपकी नींद आ जाएगी और आपके जिंदगी में खुशियों के पल फिर आ जाएंगे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही है।
1: वही दीदी जी मैं ये जो अभी यंगस्टर के पास नहीं, लेकिन जो जब व्यक्ति की उम्र ज्यादा बढ़ती है तो उसको ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है और जब वो कर नहीं पाता तो टेंशनाइज होता है और उसकी खुशियां गायब हो जाती हैं।
0: जी
1: इसलिए हंसना भी चाहिए और बीच में जाके कुछ सामाजिक कार्यक्रम में अपना हिस्सा भी बताना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। हमारा खुश रहना जानते हैं दिनकर जी कैसा है?
1: जी
0: जैसे कि
1: जी जी
0: जब मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो वो किसी काम की नहीं होती है, उसको हमें
1: जी
0: चार्जिंग में लगाना ही पड़ता है। वैसे ही
1: जी
0: हम भी हैं कि हमारी खुशियाँ भी हमारा चार्जर हैं। जब तक हम खुद चार्ज नहीं होंगे, हम दूसरों को रोशनी या खुश कैसे रख पाएंगे? रोशनी दे ही नहीं पाएंगे उन्हें।
1: बहुत खूब दीदी जी, आपके इससे जो है जो व्यक्ति डिस्चार्ज हो गए होंगे तो जरूर रिचार्ज हुए होंगे, जो है जो आपने ये बात कही कि बैटरी को डिस्चार्ज के बाद रिचार्ज किया जाता है,
0: जी
1: तो वही चीज आपकी ये बात सुनकर जो जितने लोग सुनेंगे या सुन रहे होंगे वो सब जो है ये इससे रिचार्ज हो जाएंगे
0: धन्यवाद आपका।
1: और वो ऊर्जावान भी हो जाएंगे जी। एक मैं अंत में एक जो है कहावत के साथ विदा लूंगा,
0: जी
1: जो ना कभी थकता है ना कभी रुकता है ना कभी झुकता है वही हिंदुस्तानी कहलाता है, वही हिंदुस्तानी कहलाता है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दिनकर जी, और उम्मीद है कि हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे वो भी खुश हो रहे होंगे और अपनी खुशी का अब एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे।
1: बिल्कुल, और प्रेमदास बाबा जी आपकी और मेरी बात सुन के जो है गदगद हो गए हैं से दीदी जी।
0: उनको बोलिए वो भी ऐसे ही गदगद रहें और हमेशा खुश रहें।
1: जी 80 वर्ष की उम्र में वो खुशी का उनका कोई ठिकाना नहीं, और उन्हीं के साथ आपका बजाया हुए गीत हम सुन रहे हैं। नमस्कार दीदी
0: नमस्ते
1: जी।
0: नमस्ते।

0: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं अनुभा बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: अनुभा जी, बहुत दूर से आपने हमें कॉल लगाया है।
1: जी हाँ, एक्चुअली मैं सुनती रहती हूँ हमेशा भोपाल आकाशवाणी से आपका प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: सुनना।
0: बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर कि आप उतने दूर से सुनती रहती हैं। अच्छा, आज हमारा विषय है कार्यक्रम में कि क्या आप अपने आप को खुश रखती हैं? आप अपने आप को खुश रखना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है?
1: खुश रहना एक्चुअली में जीवन के लिए तो बहुत जरूरी है। हम खुश रहते हैं तो हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में सारे सदस्य आपसे खुश रहें, तो सबसे पहले आपको खुद खुश होना होगा, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे।
0: ये
1: तो
0: बहुत
1: खुश
0: बड़ी

0: बात आपने
1: के
0: कही
1: लिए,
0: है।
1: हाँ जी, तो खुश होने के लिए किसी बड़े कारण का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटी छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। एक अच्छे और सफल जीवन की कुंजी मेरे हिसाब से तो खुश रहना ही है।
0: जी अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि जब आप देखिए, टेंशन हर किसी के जीवन में आती है, थोड़ी बहुत आती ही है, तो अगर आप बहुत तनाव में होती हैं, तब आप अपने आप को क्या वो खुशी दे पाती हैं जो आप डिजर्व करती हैं?
1: एक्चुअली समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं और ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। मैं उस समय में बस एक चीज ये याद रखती हूँ कि जैसे अच्छा समय जल्दी गुजर जाता है, हमें पता नहीं चलता, ऐसे ये तनाव, ये बुरा समय भी जल्दी गुजर जाएगा। तो हमें उसका इतना ज्यादा टेंशन ना लेके उन समस्याओं को सुलझाने की तरफ, उस दिशा में काम करना चाहिए, अपने दिमाग को स्थिर रख के, सकारात्मक सोच के साथ।
0: बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आपने कही है अनुभा जी। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको तुरंत खुशी देती है? कुछ ऐसा है जिसके लिए आप वक्त निकाल पाती
1: मुझे मेरे दोस्तों से बात करना बहुत पसंद है,
0: हैं?
1: और जब भी थोड़ा सा भी टेंशन या कुछ ऐसा है, या जैसे ही समय मिला वैसे ही मैं उनसे बात कर लेती हूँ तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी मुस्कान देख के आपके दोस्त भी खुश हो जाते होंगे कि हाँ, आज मेरी दोस्त का फोन आ गया, उससे बात हो गई।
1: हाँ
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अनुभा जी। ऐसे ही सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी भोपाल के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: हेलो, मैं रूपा बोल रही हूँ, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। और ये आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि हम अपनी भावनाएं इसमें व्यक्त कर सकते हैं।
0: आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। रूपा जी, आप अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करती हैं? आज का हमारा विषय यही है कि कितना ज़रूरी है अपने आप को खुश रखना, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी जी बिल्कुल, ये विषय बहुत ही अच्छा है। खुद को खुश रखना मतलब सबको खुश रखना। मैं अपने को खुश रखने के लिए मैं पेंटिंग करती हूँ, गाने सुनती हूँ, और गाने से जो भावनाएं आती है और आपके रेडियो के माध्यम से जो गाने सुनने को मिलते हैं, दिल वैसे ही खुश हो जाता है।
0: वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। आप रेडियो भी सुनती हैं, अपने शौक को भी पूरा करती हैं।
1: जितना खुश आप रहेंगे उतना ही आप सबको खुश रख पाएंगे। पहले तो अपने अंतर मन को खुश रखना जरूरी है। तो यही इच्छा हमारी है और सबकी वही होनी चाहिए कि अपने को पहले खुश करें, दूसरों को खुश करने से पहले।
0: जी देखिए, इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जब हम एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो उसमें एक सेफ्टी अनाउंसमेंट आती है कि जब फ़्लाइट में इमरजेंसी होती है तो पहले आप हमेशा अपने आप को ऑक्सीजन मास्क पहनाएं, उसके बाद दूसरों की मदद करें।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: ज़िंदगी के लिए भी यही नियम लागू है कि जब तक आप खुद मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत नहीं होंगे, आप किसी और को नहीं संभाल सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। तो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हमारा हंसता चेहरा कोई अगला भी देखता है, अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, वो खुद भी मुस्कुराता है। तो
0: जी
1: बस यही भावनाओं से सबके दिलों में हम खुशी भर सके, यही जिंदगी का मूल है।
0: थैंक यू रूपा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है ये। और आपकी आवाज़ और आपकी बात सुन के लगता है कि आप भी ऐसी ही हंसमुख इंसान हैं, तभी आपका चेहरा देख के लोग भी खुश हो जाते होंगे।
1: बिल्कुल, यही मेरी दिली इच्छा है कि मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहूं और सबको खुश करती चलूं।
0: ईश्वर आपकी इस इच्छा को हमेशा पूरा करे। खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए और खुशियाँ बांटती रहिए। आपने
1: धन्यवाद
0: कार्यक्रम
1: सर,
0: में फ़ोन किया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी कल संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का 5वां और आखिरी दिन है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में आज सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से उनके निवास पर भेंट की। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान दोपहर 1:30 कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित करेंगे। वहीं शाम 5 बजे वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच इस महीने की 17 तारीख को लखनऊ में और तीसरा तथा अंतिम मैच 20 तारीख को चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं

ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से लिखने वाले हैं प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले, और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनिए ये गीत।

अगले गाने को पसंद किया है शिवलोक ग्रीन, खजूरी कला से लिखने वाले हैं तुलसी राम पाटंकर घनश्याम जाट, त्रिवेणी प्रसाद, निखिल वर्मा, मुकेश सोनी, राहुल निकुंभ, परमिंदर तिवारी, खालिद खान, राजेश पंडित, विष्णु पांडे, रमेश्वर स्वरूप और राजा। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। इन्होंने गाना पसंद किया है फिल्म हम का। आवाजें हैं शोभा जोशी और मोहम्मद अजीज की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शरीफ बदमाश से, आवाज़ किशोर कुमार और साथियों की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आरटी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है हिनोतिया जागीर से, लिखने वाले हैं रामदास बेलदार, रोहित मैकेनिक और राहुल ठाकुर, साथ में इस गाने को पसंद किया है अंशु छोटे उस्ताद ने, और गुड्डा यादव और राजेंद्र ठाकुर इन्होंने ये फरमाइश भेजी है हिनोतिया जागीर भोपाल से, लिखने वाले हैं। अगला पत्र जो है हमारे पास में ये है, इसी गाने के लिए जो फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं राजा रामनगर देवास से, राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, रूपा खड़ी देवास से, हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल निरंजन माली, और जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालिक्राम और दशरथ बागवान और लोकेंद्र वर्मा ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म समाधि से, आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, आरडी बर्मन का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से लिखने वाले हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमिन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन।

0: किया सो किया, तू बचा ले बलम आज मेरा जिया। हाय रे बंगले के पीछे तेरी फेरी के नीचे, हाय रे पिया।
1: आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कालिया का एक गीत, आवाज मोहम्मद रफी और साथियों की है। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और संगीत है आर डी बर्मन का। इस गाने को पसंद किया है उपाध्याय नगर देवास से लिखने वाले हैं मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुपरमार्केट देवास से लिखने वाले हैं प्रकाश चंद जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी और मोहसिनपुरा देवास से जमील खान, इमरान खान, फुरखान और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये।

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:25 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: बड़ी बहू
4: ये तुम्हारी ना,
3: इतनी भी क्या जल्दी थी।
4: अरे और छोटी ये तुम्हारी ना,
3: और ये
5: मेरी गुड़िया की ना।
6: पर दादी
3: हाँ
6: आपके नाम
7: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
8: शुभ शुभ बोलो
6: क्या
7: RBI कहता है।
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5:00,
11: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
10: तो सुनते रहिए मालवा की शान
12: आकाशवाणी इंदौर।
11: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00।
10: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
13: हाँ हाँ क्यों नहीं,
14: हम जी।
2: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी
12: इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: और सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: इस समय आप है हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार की 8वीं कड़ी।
4: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, शिबू अपनी बीमारी से तंग आकर भगवान से मरने की कामना करता है। नारायणी उसको ऐसा सोचने से मना करती है। अपने भूखे बच्चे को नारायणी पानी पिलाकर चुप कराने की कोशिश करती है। यशवंत आकर नारायणी से 2 दिन बाद हड़ताल शुरू होने की बात बताता है। शंभू एक खाली डिब्बा लेकर मजदूरों से उसमें पैसे डालने के लिए कहता है ताकि हड़ताल के समय भूखे बच्चों के खाने का इंतजाम किया जा सके। मजदूर शंभू का मजाक उड़ाते हैं। हड़ताल शुरू हो जाती है। बलबीर स्वामी यशवंत से और ज्यादा चंदा इकट्ठा करने के लिए कहता है। हड़ताल को 1 हफ्ता बीत जाता है। लिचू और शिबू हड़ताल की भयावहता पर चर्चा करते हैं। नारायणी को ठाकुर साहब के घर कपड़े धोने का काम मिल जाता है। वो ठाकुर साहब से बच्चे के दूध के लिए 5 रुपए मांग के लाती है। शिबू और लिचू इन रुपयों से नशा करने के लिए खलासी लंगर की ओर चल पड़ते हैं। अब आगे

0: अरे जल्दी जल्दी चल ना।
1: अरे
0: देख लीजो, हमारे लौटने से पहले बच्चा जाग गया तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा उसका।
1: अरे भाई शिबू, अरे मैं ठहरा एक पैर का अपंग, भला इससे तीस कैसे चल सकता हूँ?
0: अरे कोशिश तो करना।
1: अरे शिबू अपनी ताकत भर तो चल रहा हूँ।
0: अरे ओ, सामने देख, वो बल्लियों के पुल के पास कंपनी का अकाउंटेंट खड़ा है।
1: अरे ये साहब तो सबसे अलग ही दिखते हैं, दूर से ही पहचान लो। माथे पर चंदन का तिलक, चोटी में फूल, सफेद चमकती हुई धोती और पैरों में कैनवस का जूता।
2: क्यों रे लीचू शिबू, ये जोड़ी कहाँ जा रही है?
1: कहीं नहीं साहब, कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहल रहे हैं।
2: टहलने जा रहे हो?
0: हाँ जी, टहलने ही तो जा रहे हैं।
1: अरे शिबू,
2: या पीने जा रहे है हो?
0: जी वो
2: क्यों रे लीचू, तू अभी भी पीने पिलाने से बाज नहीं आता?
1: अरे नहीं साहब।
2: अरे शराब की वजह से ही तू अपंग हुआ है, जानता है? अब इस बीमार को जिंदा मारेगा क्या? तुम्हारे पतन का कारण है ये शराब, समझते क्यों नहीं? जाओ जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम खुद जहर पीना चाहते हो ना, पियो, मरो।
3: अरे भाई मेरे पास शराब की कमी नहीं है, पर क्या तेरे पास पैसे हैं?
1: इधर देख, मेरी मुट्ठी में देख, रुपया है हमारे पास, बस जल्दी से ट्यूब की टोटी खोल दे और हम पी ले।
3: ठीक है, अच्छी बात है, ले खोल दी टोटी।
0: अरे लीजू भैया, अरे मजा आ गया लीजू भैया,
1: मजा आ गया शिबू।
0: अरे बहुत दिनों बाद पीने को मिली, वाह वाह वाह वाह, मजा आ गया।
1: तू तो बस यूं ही है, दो घूंट में ही तय बोल गया।
0: अरे नहीं नहीं देख, मेरे तो होश ही ठिकाने पर नहीं है। देख बात सुन, देख किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो समझ लियो कि मैं तो भैया गंगा नहा लिया।
1: चिंता मत कर शिबू, चिंता मत कर, चल चल
0: चल चल भैया, चल चल।
1: शिबू शिबू, इस खटिया पर लेट जा। अरे थोड़ी देर के लिए सो जा, आराम आज। अरे ये क्या, इसे तो बिल्कुल होश नहीं रहा, बेसुध होकर खटिया पर गिर पड़ा। शिबू शिबू शिबू,
4: देखो तो, अरे इस बीमार आदमी को क्या हो गया भैया, देखो देखो।

0: दामी है या मर गया? अरे ये तो सिर्फ बेहोश है, अरे सांस भी चल रही है अब इसकी।
1: ये मेरे घर के सामने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? हटो, हटो, रास्ता दो मुझे।
2: नारायणी देख,
1: क्या हुआ?
2: पति की क्या हालत हो गई? देख देख,
1: क्या हुआ, क्या हुआ मेरे पति को? इनकी हालत तो वाकई बहुत खराब है। कोई मेरी मदद करो, बचाओ, बचाओ इन्हें।
3: अरे मैंने तो हजार बार मना किया है इसे, पर ये मानता ही नहीं। ये तो साइकिल की ट्यूब तक चबा जाता है, ये किसी से भी नहीं डरता। नारायणी, नारायणी, तुझसे भी नहीं डरता ये तो।
4: क्या हुआ, ये भीड़ क्यों है यहाँ पर?
5: अरे तो शिबू पीकर बेहोश पड़ा है।
4: अरे चलो भागो तुम लोग यहाँ से, यहाँ पर तमाशा हो रहा है। चलो जाओ,
1: देखो ना इन्हें क्या हो गया।
5: अरे कुछ नहीं हुआ है नारायणी, नशा उतरने पर ये अपने आप ठीक हो जाए।
1: क्या बोलूं मैं, ये लिच्छू राक्षस है, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं कहती हूँ पकड़ो इसे और मारो इसे।
5: अरे अरे चुप हो जा नारायणी, चुप हो जा, सामने से सुपरवाइजर आ रहा है।
1: ये अपंग मरता भी तो नहीं है, अरे पीनी है तो खुद पी, मेरे आदमी को क्यों पिलाता है? राक्षस, तेरे शरीर में कीड़े पड़े हैं, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी।
3: नहीं
1: नारायणी, कुछ मत बोल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती।
3: नारायणी मैं तो
6: सुनो, ए सुनो, इधर लिच्चू है क्या? ओ तो तू यहाँ है, मुझे मालूम था कि तू शिबू के घर ही मिलेगा। देख हड़ताल के समय भी मैंने रहम खाकर तुझे साहब की नाली साफ करने के लिए एक दिन का काम दे दिया, और तू काम पर ना आकर शराब पीने लगा है? चलो चल, उठ चल मेरे साथ।
3: चल तो रहा हूँ।
6: हाँ हाँ, नाली में से कीचड़ निकालना है, चल जल्दी कर।
3: चल रहा हूँ, चल रहा हूँ।
7: नारायणी
1: क्यों पीते हो शराब?
7: मुझे माफ कर दे नारायणी, मुझे माफ कर दे।
1: कम से कम इतना तो सोचा होता कि जिन रुपयों की आपने शराब पी वो बच्चे के दूध के पैसे थे। आपके लिए शराब जरूरी है या बच्चे का दूध?
7: देख नारायणी, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी भी तो मांगी है मैंने।
1: रहने दो, माफी तो पहले भी कई बार मांग चुके हैं आप, लेकिन उससे क्या फायदा? चार दिन बाद फिर वही ढाक के तीन बात। आप मुझे ये बताइए कि खलासी लंगर गए क्यों आप?
7: वो लिच्चू है ना, वो
1: लिच्चू?
7: हाँ वो ही मुझे जबरदस्ती लेकर गया था, मैं तो नहीं जाना चाहता।
1: लिच्चू तुम्हें कुएं में छलांग लगाने के लिए कहेगा तो क्या लगा दोगे तुम? बोलो लगा दोगे?
7: बस कर,
1: बोलो जवाब दो।
7: बस कर नारायणी, बस कर नारायणी, तेरे सिर की कसम, मैं सच कहता हूँ, तेरे सिर की कसम, जो फिर कभी शराब पीऊं, हाँ तेरे सिर की कसम, तेरे सिर की कसम, तू मुझे माफ कर दे।
1: ठीक है, मैं आपको एक मौका और देती हूँ, अगर फिर कभी देखा या सुना तो सच मुन्ना को लेकर साई नदी की गोद में समा जाऊंगी मैं।
7: क्या?

0: वही हो रहा है जिसका मुझे पहले से डर था। इस बार भी हड़ताल राजनीति की भेंट चढ़ गई। कहने को तो लोकल लीडर शास्त्री जी ने मजदूरों की हड़ताल करवा दी, मगर हड़ताल होने के बाद एक बार भी कोई गरीब मजदूरों की सुध लेने नहीं आया। अब तक तो लोगों के घरों में किसी तरह चूल्हा जलता रहा, लेकिन अब चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाएगी। बच्चों के पेट भूख से कुल बुलाएंगे। कितना समझाया था कि अपनी आधी मजदूरी इस डिब्बे में डालो, पैसे बुरे वक्त में काम आएंगे, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं। अब तो भगवान ही मालिक है।
1: राम राम काका।
0: अरे जीते रहो भृगु, कैसे हो?
1: जिंदा हूँ काका, लेकिन आप यहाँ क्यों बैठी हैं?
0: यहाँ बैठकर मैं रोज सामने वाले रोजगार दफ्तर को देखता हूँ। देखता हूँ कि कितने लोग यहाँ आते हैं, बेरोजगारी की भीड़ का हिस्सा बनते हैं और बिना रोजगार पाए निराश होकर वापस लौट जाते हैं।
1: काका, हड़ताली मजदूरों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
0: हाँ बेटा,
1: खाने को दाना तक नहीं है, जंगली लता और पत्ते तक तोड़ तोड़ कर खा रही। पहनने को वस्त्र भी नहीं है, शरीर ढकने के लिए कपड़े के एक टुकड़े के लिए हाहाकार कर रहे हैं। बच्चों के पेट हड्डी से चिपके जा रहे हैं। क्या हम यही दिन देखने के लिए जिंदा हैं? बोलो काका, क्या हम यही दिन देखने के लिए जिंदा हैं?
0: अरे बेटा, अभी तो और बुरे दिन देखने पड़ेंगे, मौत का तांडव होगा यहाँ पर। हम अपने प्रियजनों की लाशों को चीलों और गिद्धों को नोच नोच कर खाते हुए देखेंगे, विवश होकर अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे। बेटा
1: इतना विभत्स दृश्य काका, काका कैसे रोका नहीं जा सकता? काका
0: रोका जा सकता है बेटा।
1: कैसे?
0: हड़ताल खत्म हो जाए तो लोग काम पर जाएंगे, उनके पेट को अन्न नसीब होगा, तब कहीं जाकर इस प्रलय को रोका जा सकता है।
1: पर हड़ताल खत्म करना हमारे वश में तो है नहीं काका।
0: हमारे वश में तो कुछ भी नहीं है बेटा, हम मजदूर तो यूनियन के नेताओं के हाथों की कठपुतली हैं, जैसा नचाएंगे हमें नाचना पड़ेगा।

0: अरे शिबु, अरे लेचू भैया, ये यूनियन के नेता कर क्या रहे हैं? हड़ताल का तो कोई फैसला ही नहीं हो रहा है।
1: अरे यशवंत कहता है कि कुछ दिन सब्र से काम ले और उसे पूरा विश्वास है कि हम अच्छे दिन देखेंगे। अरे शिबू, हम लोग परमानेंट होंगे।
0: हम लोगों की छटाई नहीं होगी, हम लोग परमानेंट होंगे। है
1: बस शिबू भैया, उसी दिन का इंतजार है। हम परमानेंट होंगे और हमें तमाम दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।
0: हाँ लीचू, लीचू भैया, वो तेरा लड़का जगन्नाथ दिखाई नहीं पड़ रहा।
1: अरे वो शिबू, उसे मैंने भेटा गांव भेजा है।
0: भेटा गांव?
1: हाँ।
0: मगर किस लिए?
1: वो बुआई का समय चल रहा है ना, तो शायद उसे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए।
0: अरे लीचू, इतने छोटे से बच्चे से काम कराएगा तू?
1: अब शिबू, क्या छोटा और क्या बड़ा, अरे भूख से भला कोई जीत सका है आज तक?
0: अरे हाँ रे लीचू, ये बात तो ठीक कहता है तू।
1: शिबू, 10-12 साल का तो हो गया है वो, 7-8 साल बाद कंपनी में काम करने लायक हो जाएगा।
0: ओ, ओ।
1: बस शिबू, फिर मेरी चिंता खत्म। अच्छा तू एक मिनट यही रुक।
0: अरे पर तू जा कहाँ रहा है?
1: अरे वो झाड़ी देख रहा है ना, बस वहीं तक अभी आया।
0: पर बात सुन, वहां जाकर करेगा क्या तू?
1: अरे मस्ती का सामान रखा है मैंने वहां पर, मैं अभी आया।
0: क्या हमारे दिन भी कभी फिरेंगे, या फिर यूनियन के नेता झूठे सपने दिखा रहे हैं? हाँ, जुलूस तो रोज ही निकलता है, नारे भी खूब लगते हैं, पर जुलूस और नारों से फायदा भी क्या? अरे इनसे पेट थोड़ी भरता है।
1: शिबू देख, ये रही लाल परी।
0: लाल परी? अरे लीचू भैया, ये तो विलायती बोतल लगती है।
1: हाँ, बोतल विलायती है, एकदम हमारे यूनियन नेताओं की तरह।
0: क्या मतलब?
1: अरे

0: मतलब ये मेरे भाई कि यूनियन नेता जो कहते हैं उसे करते नहीं और जो करते हैं उसे कहते नहीं, ठीक वैसे ही जैसे कि इस बिलायती बोतल में देसी शराब भरी हुई है।
1: देसी शराब? मगर ये बता ये मिली कहाँ से?
0: अरे ठाकुर साहब ने फेंकने के लिए कूड़ा कबाड़ा दिया था,
1: अच्छा
0: उसमें ये भी थी। लगता है ठाकुर साहब आजकल विलायती शराब से ऊब गए हैं।
1: अरे दिखा तो।
0: ले ले ले।
2: कमाल है, विलायती बोतल में देसी शराब है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। ठहर ठहर ले, चू मैं जरा खोल के देखता हूँ।
2: खोलता हूँ।
1: अरे क्या खुशबू है, वाह वाह वाह, दिल करता है सारी की सारी पी जाऊं पी जाऊं।
0: हे हे बीमार आदमी, अरे तूने नारायणी की कसम नहीं खाई थी कि तू दारू नहीं छुएगा?
1: अरे तू क्या समझता है, मैं औरत से डरने वाला आदमी हूँ। है
0: ठीक है ठीक है, लेकिन सुन सुन सुन, नारायणी के आने से पहले ही मैं उठकर चला जाऊंगा।
1: ठीक है चले जाना, लेकिन बात सुन, बोतल मेरे हवाले करके तो तू इसी समय जा सकता। जा।
0: अरे यार शिवू, जैसी तेरी घरवाली है ना, बस वैसे ही मेरी घरवाली भी थी। लेकिन शिवू आजकल तो पढ़ी लिखी मेम लोग साहबों के साथ बैठकर पीती हैं।
1: अच्छा?
0: अरे उस दिन अफसर क्लब में मैं इन्हीं दो हाथों से मेम साहबों की उल्टी साफ करके आया हूँ।
1: अच्छा?
0: हाँ, जरा ठहर, दो घूंट पेट में उतार लूँ।
1: अरे आजा, बोतल मुझे ले, मैं भी तो चखूं इसका स्वाद। दे। अरे लीचू कमाल है भाई। बात सुन, सभी में एक जैसी नहीं होती लीचू। अरे ठाकुर साहब की बीवी को नहीं देखा तूने?
0: देखा है देखा है। अरे वो तो हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है।
1: अरे हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। और उस दिन ना 3 अंग्रेजी बोतलें फर्श पर पटक कर तोड़ डाली थी।
0: शिव शिव आराम से आराम से। और सुन, जब मैं कंपनी में भद्राचल विभाग में था ना, तब जगन्नाथ की माँ पेट से थी। हम दिहाड़ी वाले रात को खलासी लंगर में बैठकर मजे करते थे। और जगन्नाथ की माँ बेचारी आधी रात तक सभी पर बैठकर मेरा इंतजार करती थी। शिव मेरा इंतजार करती थी।
1: सच्ची लीचू बेचारी ने बहुत दुख झेले होंगे, है ना? अरे उसने अपनी जिंदगी में दुख के सिवा तो कुछ देखा ही नहीं होगा, है ना?
0: ये बात तो है। अरे शिबू, एक रात तो एकदम गजब ही हो गया।
1: क्या हुआ था?
0: अरे उस रात अपने बाल खोलकर रणचंडी का रूप धारण करके खलासी लंगर में पहुंच गए। हम लोगों के सामने कतार में रखी बोतलें उठा उठा कर पटकने लगे।
1: अच्छा?
0: अरे सारे खलासी तितर बितर हो गए। हाँ शिबू, बाप रे क्या भयानक दृश्य था वो।
1: अरे लीचू, तू बेचारी को बहुत बहुत सताता था, है ना? बहुत सताता था तू।
0: बेचारी को पूरे जीवन सताया है मैंने, हम तो जन्नत में शांति से होगी वो।
1: लीचू नारू नारू लीचू लीचू, मेरे यार मेरे दोस्त, मैं भी सारी जिंदगी नारायण को कुछ नहीं दे सका। एक मेरे दोस्त, मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है।
0: शिबू
1: लीचू,
0: शिबू
1: लीचू, मैं मरूंगा।
0: अरे तू क्या
1: है? मैं मरूंगा शिव।
0: क्या बकवास कर रहा है?
1: कह रहा हूँ
0: नहीं नहीं
1: रिजु, मुझे मार मार, मुझे अरे मुझे मार रिजु, मेरे मुंह पर जूते मार, अरे मेरे मुंह पर जूते मार, नहीं तो नारायणी फिर मुझे दोष दे, अरे मुझे मार, अरे मुझे मार रिजु, मुझे मार, अरे मुझे मार,
0: चुप हो जा मेरे भाई, चुप हो जा,
1: अरे मुझे मार रिजु,
0: चुप हो जा शिवो।
3: क्या बात है बलबीर स्वामी, तुमने तो कहा था कि मुख्यालय से दो तीन प्रतिनिधि भी आएंगे, कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करेंगे, हमारी मांगे मान ली जाएंगी, सभी मजदूर परमानेंट हो जाएंगे।
2: उम्मीद पर दुनिया टिकी है यशवंत, हमें भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
3: अरे कब तक, आखिर कब तक बलबीर स्वामी, कब तक हम झूठी उम्मीद पर आस लगाए बैठे रहेंगे, कब तक नंगे भूखे मजदूरों को झूठी दिलासा देते रहेंगे, अरे कब तक हम उनका विश्वास तोड़ते रहेंगे?
2: कुछ दिन और यशवंत, बस कुछ दिन और, अब और मुझे लगता है कि फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, हमारी जीत निश्चित है।
3: हर बार बार बार यही एक आश्वासन बलबीर, यही एक आश्वासन, आश्वासनों के बलबूते जंग नहीं जीती जाती बलबीर स्वामी। अब वो वक्त आ गया है जब हमें कुछ ठोस करके दिखाना होगा, वरना
2: वरना क्या, वरना क्या यशवंत?
3: बलबीर, अगर एक बार मजदूरों का विश्वास यूनियन पर से उठ गया तो जानते हो क्या होगा?
2: क्या होगा?
3: सारे मजदूर मिलकर हमें साई की बालू में जिंदा दफना देंगे, समझे तुम, साई की बालू में जिंदा दफना देंगे।
2: तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है यशवंत।
3: अभी तो सिर्फ बू आ रही है बलबीर, अगर मजदूर भड़क उठे तो हमारी और तुम्हारी हस्ती तक मिटा डालेंगे, कोई जान तक नहीं पाएगा कि यहाँ यशवंत और बलबीर स्वामी नाम का कोई यूनियन नेता हुआ करता था।
2: यशवंत यशवंत, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, तुम किसी भी तरह से मजदूरों को काबू में रखो, काबू में रखो उन्हें।
3: लेकिन कब तक?
2: बस बस कुछ दिन और, मुख्यालय से हमारे प्रतिनिधि दो चार दिन में आते ही होंगे, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा।
3: और हमारे वो लोकल लीडर शास्त्री जी का क्या हुआ? उनका नाम लेकर बहुत डींगे मारा करते थे तुम, कहाँ है अब शास्त्री जी? अरे एक बार भी हम मजदूरों के बीच नहीं आए, वो कहाँ खो गए उनके सारे वायदे, या फिर डर के मारे किसी बिल में जा छुपे हैं?
2: देखो यशवंत, शास्त्री जी का नाम सम्मान के साथ लो।
3: बलबीर, मैं शास्त्री जी से मिलना चाहता हूँ, उनके सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ।
2: ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं से शास्त्री जी को अवगत करा दूंगा, और फिर जब वो कहेंगे उनसे तुम्हारी मुलाकात की व्यवस्था भी हो जाएगी।
3: नहीं बलबीर, मुझे उनसे आज और इसी वक्त मिलना है, तो मेरे साथ अभी उनके पास चल रहे हो?
2: नहीं, अभी ये संभव नहीं है।
3: क्यों संभव नहीं है?
2: देखो शास्त्री जी बहुत व्यस्त नेता हैं, उनसे हर कोई जब चाहे नहीं मिल सकता, भाई पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उनसे।
3: तो ठीक है, आज से शास्त्री जी हमारे नेता नहीं रहेंगे, मैं आज ही सब मजदूरों को खबर कर देता हूँ कि यूनियन का शास्त्री जी से कोई संबंध नहीं है, और चूंकि शास्त्री जी तुम्हारे सरपरस्त हैं, इसलिए हम तुम्हारी जगह भी यूनियन का नया अध्यक्ष चुनेंगे।
2: देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी हालत में तुम ऐसा नहीं कर सकते।
3: अरे कौन रोकेगा मुझे बलबीर, सारे मजदूर भाई मेरे साथ हैं।
2: ओहो, तो तुम्हारे पर निकल आए हैं।
3: नहीं बलबीर, मैं सिर्फ न्याय के साथ हूँ, और न्याय मजदूरों के साथ है, मैं चलता हूँ।
2: यशवंत ठहरो, तुम इस तरह नाराज होकर नहीं जा सकते, कुछ जानते भी हो इसका क्या परिणाम निकलेगा?
3: हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ।
2: क्या जानते हो?
3: यही कि यूनियन को तुम जैसे दगाबाज नेताओं से मुक्ति मिल जाएगी, यूनियन को नया अध्यक्ष मिलेगा जो मजदूरों की सच्ची रहनुमाई करेगा।
2: नहीं यशवंत नहीं, होगा ये कि हड़ताल टूट जाएगी, आंदोलन बिखर जाएगा। विश्वास करो मेरा यशवंत, मैं दगाबाज नहीं हूँ, मैं सच्चे मन से मजदूरों के साथ हूँ, उनका अपना साथी हूँ मैं।
3: मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं रहा बलबीर।
2: मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं यशवंत?
3: शास्त्री जी से इसी वक्त मिलवा कर।
2: ठीक है, चलो
3: चलो आओ।
4: तुम वही हो ना दलितों के नए नेता?
3: जी,
4: शायद मैं तुमसे पहले भी एक बार यहीं पर मिल चुका हूँ।
3: बिल्कुल ठीक पहचाना शास्त्री जी आपने, आप हम लोगों के नेता हैं, आपका जातिवाद की बात करना शोभा नहीं देता, चाहे वो दलित हो या फिर ब्राह्मण या बनिया, काम करने वाले सिर्फ मजदूर हैं, मजदूर की सिर्फ एक ही जाति होती है, श्रम करना, खून पसीना एक करके निर्माण करना।
4: क्या तू नहीं जानता, सच्चिदानंद ने अपनी किताब में लिखा है दक्षिण में कहीं ऐसा नियम है कि निम्न जाति के लोग दलितों से 33 फुट, उच्च जाति से 66 फुट और ब्राह्मणों से 99 फुट की दूरी पर खड़े हों। अरे किसी स्थान पर सफाई कर्मचारियों द्वारा राजपूतों जैसी पोशाक लेने पर मार मार कर हड्डियां तोड़ दी गई थी।
3: अरे ये सब बीती बातें हैं शास्त्री जी, आज हम आजाद मुल्क के आजाद नागरिक हैं। सरकार ने इस कानून को लागू भी करा दिया है। आज के युग में जातिगत भेदभाव के लिए सजा का प्रावधान है।
2: यशवंत ठीक कह रहा है शास्त्री जी।
4: तुम लोग किस काम से आए हो यह मैं खूब जानता हूँ। तुम लोग अब मेरी सलाह लेने आए हो, 7 दिन बीत गए।
5: अब मैं यूनियन के समझौता पत्र को यूं ही नहीं नकार सकता,
4: यही सोच रहे हो ना तुम? मैं यूनियन के समझौता पत्र को बिल्कुल नकार सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी।
3: कौन सी बात शास्त्री जी?
4: जिस समझौते की कंपनी दुहाई दे रही है वो समझौता जबरदस्ती हमसे करवाया गया है, इस बात का मैं सबूत दे सकता हूँ।
2: लेकिन शास्त्री जी हमारे पास फंड नहीं है, मुख्यालय की तरफ से अब तक कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचा, दिहाड़ी मजदूरों के बीच कई लोग बीमार भी हैं, अगर वे एक एक करके मरने लगे तो।
4: सुनो, तुम लोगों को हिम्मत से काम लेना होगा। फंड का रुपया खत्म भी हो गया तो कंपनी की स्टील, रॉड, सीमेंट, डीजल, ऑयल, पेट्रोल, टिम्बर, इन सब के ऊपर कूद पड़ना होगा। उन्हें ले जाकर बेच दो और फंड की व्यवस्था करो।
2: क्या
4: इंजीनियर को डराओ? चिंता बिल्कुल मत करो, मैं लीगल फाइट करा दूंगा, तुम लोग हारोगे नहीं।
3: लेकिन कंपनी ने ऐसे पुराने सामानों के लिए कोटेशन मांगा है।
4: तो क्या हुआ, क्या हुआ? अरे कोटेशन देने वाले व्यापारी जब कोटेशन का मुआयना करने आएंगे तो तुम लोगों ने भगा देना, पीट पीट कर उनका सर तोड़ देना, सामान को बेच देना और पैसे को दिहाड़ी मजदूरों में बांट देना।
3: लेकिन शास्त्री जी।
4: लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ध्यान रहे, मेरी भी कुछ निश्चित कीमत है, ये मेरे एजेंटों ने बताई दिया होगा, तभी मैं मजदूरों के बीच आ सकता हूं।
2: क्या आप

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी कल संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस दौरान 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल प्रवास पर हैं। श्री प्रधान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उनके निवास पर भेंट की। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान दोपहर 1:30 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे और आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। वहीं शाम 5 बजे वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। आईसीसी महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच इस महीने की 17 तारीख को लखनऊ में और तीसरा और अंतिम मैच 20 तारीख को चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस

संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इस विचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, आज के समय में महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, राजनीति और तकनीक जैसे हर क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। इसी दिशा में सीमार्ट पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है। बहनों, सीमार्ट एक ऐसा मंच है जहां महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित और बेचा जाता है। इस पहल के माध्यम से महिलाओं को अपने हुनर और प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। इसमें हस्तशिल्प, कपड़े, घरेलू सजावट की वस्तुएं, खाद्य सामग्री, कलाकृतियां तथा अन्य उपयोगी सामान शामिल हैं। यह पहल महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान भी प्रदान करती है। बहनों, सीमार्ट पहल के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिला उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना, महिलाओं के कौशल और प्रतिभा को पहचान दिलाना, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कराना, समाज में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। सीमार्ट पहल महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करती है। इसके माध्यम से महिलाएं अपने उत्पाद बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं। इससे उनके परिवार की आय बढ़ती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता है। कई महिलाएं जो अपने हुनर को केवल घर तक सीमित रखती थी, अब बड़े स्तर पर व्यापार कर पा रही हैं। बहनों, सीमार्ट से महिलाओं को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, नए कौशल सीखने के अवसर मिलते हैं, समाज में सम्मान बढ़ता है और छोटे उद्योगों को पहचान मिलती है। सीमार्ट पहल का प्रभाव केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। इससे बेरोजगारी कम होती है और देश के अर्थव्यवस्था में भी लाभ पहुंचता है। यह पहल महिलाओं को प्रेरित करती है, वे अपने सपनों को पूरा करें और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। बहनों, यह कहा जा सकता है कि सीमार्ट पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सक्षम बनाने का कार्य करती है। समाज और देश के विकास के लिए ऐसी पहलों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। यदि महिलाओं को उचित अवसर और समर्थन मिले तो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। बहनों, जब इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है, तब उसे कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। इसी प्रेरणा को दर्शाता है फिल्म संजू का प्रसिद्ध गीत कर हर मैदान फतेह, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत कर हर मैदान फतेह, जिसे फिल्म संजू से लिया गया था और जिसे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया था।
1: शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। सो बहनों, आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर ज्योति सिंह बघेल, जो योग के क्षेत्र में बहुत ही सालों से जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी कल्पना जी, नमस्कार
1: जी। अच्छा ज्योति जी, महिलाओं के स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है?
2: जी कल्पना जी, बिल्कुल मैं इसमें जवाब देना चाहूंगी आपको। महिलाओं के लिए तो योगा है ही, ये तो सभी वर्ग के लिए, पर जैसे आपका सवाल महिलाओं के लिए है,
1: जी
2: बिल्कुल, ये महिलाओं के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित अभ्यास से आपका हृदय, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं, बॉडी में जो जोड़ है, इनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बॉडी में जो हार्मोनल का जो बैलेंस है वो एक बैलेंस फॉर्म में आपकी बॉडी में देखने को मिलता है।
1: अच्छा, बढ़ती उम्र में महिलाओं को कौन कौन से योगासन करने चाहिए?
2: जी बढ़ती उम्र में महिलाओं को जैसे कि आपका ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, भुजंगासन हो गया, त्रिकोण हो गया, वीरभद्र, ये सारे आसन जो है आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को फोकस करते हुए
1: सहायक होते हैं। अच्छा ज्योति जी, क्या योग तनाव और चिंता को भी कम करता है?
2: जी बिल्कुल करता है। योग में आप प्राणायाम ने आपने सुना होगा, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया,
1: हाँ।
2: और ये विशेषकर जो है आपका मेडिटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं, मन की शांति के लिए आपको मदद करते हैं, आपका दिमाग में जो तनाव पैदा होता है, अलग अलग जो बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस देखने को आपको मिलता है उसको घटाने में मदद करते हैं।
1: अच्छा ज्योति, योग है तो महिलाओं की जैसे बढ़ती उम्र में हड्डियों और जोड़ों के लिए भी लाभदायक होता है क्या?
2: जी बिल्कुल, ये जब आप रेगुलर फॉर्म में एक्सरसाइज ये योगा करते हैं तो आपकी जो बॉडी की डेंसिटी है उसको उसको बनाए रखने में मदद करता है, आपकी मांसपेशी और उसके आसपास के जितने भी संयोजी ऊतकों को मजबूत बनाता है, दबाव कम होता है और दर्द की तीव्रता घटती है।
1: अच्छा, महिलाओं को जैसे कि महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं घर में भी रहती, तो कितनी देर इनको योग करना चाहिए?
2: जी वैसे तो अगर आप रोज कर रहे हैं तो एक आपको 30-45 मिनट तो आराम से आप कर सकते हैं, बट जैसा आजकल का बिजी शेड्यूल चल रहा है, एक छोटे समय से स्टार्ट कर सकते हैं, 10-15 मिनट से स्टार्ट करें और उसको 4-5 बार नियमित रूप में, या हफ्ते में आप दिन बना लें कि मुझे 3-4 दिन करना है या 2 दिन रेस्ट करना है, और ऐसा कर करके आप इसको हफ्ते में पूरा कर सकते हैं।
1: अच्छा ज्योति जी, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी, जैसे कि महिलाओं की बढ़ती उम्र से संबंधित है ये, मेनोपॉज क्या होता है?
2: जी बिल्कुल, मेनोपॉज ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कल्पना जी, बहुत से लोग इससे मतलब परेशान हो जाते हैं, जबकि एक प्राकृतिक जीवन चरण, जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वैसे मेनोपॉज भी होता है, तो लोगों को इसके बारे में अवेयर भी होना चाहिए। स्थायी रूप से मतलब क्या होता है, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये बंद हो जाती है, आमतौर पर ये 45-55 वर्ष की आयु में देखा जाता है, पर क्योंकि आज का जैसे इतना बिजी लाइफ स्टाइल है, जो आपका खाने का और जो अनहाइजीनिक जो हैबिट लोग की फॉलो होने लगी है महिलाओं की, जिनसे अभी अर्ली मेनोपॉज देखने को मिलने लगा है।
1: अच्छा ये ज्योति जी, क्या योग जो है मेनोपॉज की समस्याओं को कम भी करता है?
2: मेनोपॉज की समस्याएं बिल्कुल कम होती हैं। अब इसमें ये जरूर है कि औरतों को जानना चाहिए कि मेनोपॉज की समस्याएं हैं क्या, जो कि होती नहीं है, और औरतें डर के मारे इसको बना लेती हैं, क्योंकि औरतें डर जाती हैं कि नेचुरल प्रोसेस है जिसको वो नेचुरल नहीं समझती है, और जिस वजह से उनके अंदर डर पैदा होता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी वैसे ढाल लेती है। नींद में कमी होना, थकान लगना, मूड स्विंग होना, चिंता, डिप्रेशन, ये सब जो है सिम्टम्स है मेनोपॉज के समय पे, और इनको योगा जो है कम करने में मदद करता है।
1: अच्छा जैसे कि ये मेनोपॉज के दौरान कौन कौन से योग

0: आसन लाभकारी हैं?
1: जी, मेनोपॉज के समय पे आपको वो आसन करने चाहिए जो रिलैक्स दे सके आपकी बॉडी को, जैसे कि बाल आसन हो गया, शवासन हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, सेतु बंध आसना हो गया, ध्यान श्वास की तकनीकें हो गई, जैसे कि अनुलोम विलोम का आपने बहुत नाम सुना होगा। नियंत्रित करेंगे तो बिल्कुल आपको मददगारी साबित होगा। और अगर आपकी जो मेडिकल कंडीशन है ज्यादा ही डीप में है तो बिल्कुल आपको अपने डॉक्टर से भी मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए।
0: अच्छा ज्योति जी, मैं ये एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी आप, मेनोपॉज के समय महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
1: जी, मेरा संदेश मेनोपॉज के समय यही है कि मेनोपॉज एक प्राकृतिक जीवन चरण है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है या शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। आप नियमित योग करें, एक संतुलित आहार खाएं और पर्याप्त नींद लें, सकारात्मक सोच रखें, व्यायाम को जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करें, अपने रोज की जीवन शैली में शामिल करें, आपकी लाइफ स्टाइल को तो मेंटेन करेगा ही, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखेगा। बहुत सी औरतें डर जाती हैं, उनकी अपनी पे डिपेंडेंसी, अपने पे जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है, तो उसको मेंटेन करेगा, आपकी फिजिकल कंडीशन उसको मेंटेन करेगा।
0: अच्छा ज्योति जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी की बातें हमको पता चली और मैं आशा करती हूँ हमारी बहनों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। ज्योति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहनों से इतनी अच्छी बातें करने के लिए।
1: जी, बहुत धन्यवाद आपका कल्पना जी।
2: बहनों, भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे ही महान वैज्ञानिकों में डॉक्टर कमला सोहानी का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। वे भारत की पहली महिला बायोकेमिस्ट थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों और भेदभाव का सामना करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। डॉक्टर कमला सोहानी का जन्म 18 जून 1912 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम कमला भागवत सोहनी था। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत तेज थी। विज्ञान विषय में उनकी विशेष रुचि थी। उनके परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी मिला। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में BSc की परीक्षा उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी और वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन उस समय महिलाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान नहीं था। जब कमला सोहनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रवेश लेने का प्रयास किया, तब वहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक महिलाओं को प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कमला सोहनी ने हार नहीं मानी। उनके दृढ़ निश्चय और प्रतिभा को देखकर अंततः उन्हें प्रवेश दे दिया गया। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों के साथ पढ़ने की अनुमति मिली। उन्हें पुरुष छात्रों से अलग रहना पड़ता था और अपनी योग्यता बार बार सिद्ध करनी पड़ती थी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों के समान सफल हो सकती हैं। डॉक्टर कमला सोहनी ने जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए। उन्होंने पौधों, दालों और खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों पर अध्ययन किया। उनका सबसे प्रसिद्ध शोध नीरा नामक पेय पदार्थ पर था। नीरा ताड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक पेय है। उन्होंने सिद्ध किया कि यह पेय विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है और बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उनके शोध कार्यों से देश में पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ी। बहनों, भारत की वे पहली महिला बायोकेमिस्ट बनी। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नई राह खोली, पोषण विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सम्मान प्राप्त किया। बहनों, कमला सोहनी ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी लिंग का मोहताज नहीं होती। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनकी सफलता ने समाज की उस सोच को बदलने में मदद की जिसमें महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। आज अनेक लड़कियां विज्ञान और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिनके लिए कमला सोहनी प्रेरणा का स्रोत हैं। बहनों, डॉक्टर कमला सोहनी का जीवन संघर्ष, साहस और सफलता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा किया और भारत का नाम गौरवान्वित किया। उनके योगदान केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए भी प्रेरणा दी। हम सभी को उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। बहनों, हर इंसान के दिल में कुछ सपने, कुछ उम्मीदें और कुछ अनकही भावनाएं होती हैं। जब वही भावनाएं संगीत बनकर सामने आती हैं, तो दिल सीधे उनसे जुड़ जाता है। एक ऐसा ही प्यारा और भावनाओं से भरा गीत है, दिल मेरा एक आस का पंछी, जो फिल्म आश का पंछी से लिया गया है और जिसे सुबीर सेन ने गाया।

की जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत दिल मेरा एक आश का पंछी, जो फिल्म आस्त का पंछी से लिया गया और जिसे सुबीर सेन ने गाया था। बहनों, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, पसीना और धूल मिट्टी लेकर आता है, जो हमारी त्वचा पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इस मौसम में त्वचा की सही देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारी त्वचा स्वस्थ, साफ और चमकदार बनी रहे। सबसे पहले गर्मी में धूप से बचाव करना अत्यंत आवश्यक है। तेज धूप में निकलने से त्वचा झुलस सकती है और सनबर्न की समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर जाते समय टोपी या सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। इससे त्वचा को हानिकारक किरणों से सुरक्षा मिलती है। गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है, जिससे त्वचा पर गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए दिन में 2 बार चेहरे को ठंडे पानी से धोना चाहिए और साथ ही सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हल्के और प्राकृतिक फेस वॉश का उपयोग करना बेहतर होता है। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। अधिक मात्रा में पानी, नींबू पानी, नारियल पानी और फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में नमी बनी रहती है और त्वचा भी स्वस्थ रहती है। बहनों, अंत में यही कहा जा सकता है कि गर्मी के मौसम में थोड़ी सी सावधानी और नियमित देखभाल से त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखा जा सकता है। यही आदतें अपनाकर हम अपनी त्वचा को गर्मी के दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा किसान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: अरे, आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: पर सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा,
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुषमा शुक्ला के गाए लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत लोक भजन से।

अभी आपने सुना बधाई गीत, आवाज थी सुषमा शुक्ला की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। आज हम इसमें आपको सुनवा रहे हैं सुषमा शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुषमा शुक्ला का गाया बेलान है गीत।

सुषमा शुक्ला के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए कुछ गीत और भजन। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर की

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए कुछ गीत और भजन। अब सुनिए मीरा की रचना, आवाज संगीता मिश्रा की।

सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए भजन और गीत। कार्यक्रम के अंदर अंत में सुनवा रहे हैं गीत, रचना डॉक्टर विद्यानाथ वैद्य की।

0: संगीता मिश्रा के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है समय है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: और सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

कार्यक्रम की शुरुआत प्यासा सावन फिल्म के गीत से, आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना प्यासा सावन फिल्म का गीत, शब्द रचना थी संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म सौदागर से। आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की है, शब्द रचना और संगीत रविंद्र जैन का।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म सौदागर के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और अंतिम दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसे इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। बैठक से पहले ब्रिक्स वाटिका में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि इस बैठक का संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम।
1: इस ब्रिक्स का ये सम्मेलन जिसमें आज एक डिक्लेरेशन होगा और दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि पर्यावरण का संरक्षण इस समय बहुत जरूरी है, ये ब्रिक्स वाटिका में आज प्लांटेशन सभी हमारे सदस्य देशों ने, पार्टनर कंट्रीज के मित्रों ने किया है। ये आपस में स्नेह, सद्भाव, मैत्री और प्रेम का प्रतीक रहेगा और संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम, और इन पेड़ों की तरह हम धरती को बचाने का काम करते रहें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहकर अपनी

0: पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भोपाल में श्री प्रधान ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी।
1: मैं आप सभी के माध्यम से नीट की सारे विद्यार्थियों को अपील करता हूं, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। एनटीए ने उनको और 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तय किया है।
0: प्रवास के दौरान आज श्री प्रधान ने शूटिंग एकेडमी से खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहीं सूरजनगर में भोपाल सांसद आलोक शर्मा के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गृह विभाग की महत्वपूर्ण आईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। अब खबर मौसम की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावनाएं जताई हैं। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। प्रदेश में श्योपुर, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी समेत कई जिलों में कल आंधी और बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित ओंकारेश्वर दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। संभाग आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल ओंकारेश्वर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आगरमालवा जिले में आयोजित किए जा रहे शिविरों के तहत कल जिले के ग्राम बापचा, डोंगरगांव, सुधवास, सोहतकला और सुसनेर में जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए और शिवपुरी जिले के पोहरी में कल संभावित बाढ़ और वर्षाकालीन उप आपदाओं की तैयारी के संबंध में विकास खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे, हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे

0: संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
4: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे। प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
6: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं। जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
7: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान

0: परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली पसंद हम ले रहे हैं फिल्म लूटमार से, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले ने, शब्द रचना अमित खन्ना की है और संगीत राजेश रोशन का। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ से, कोटवा नारायणपुर बाबा पटरी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं आप सब की पसंद का फिल्म लूटमार का ये गीत, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। कमरुल्ला ठकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान पोतरा, मुस्तफा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान, इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिंधोली जीरगंज बरेली से जिशान वारसी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, आप सब सुनना चाहते हैं। प्रतिज्ञा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

अभी आपने सुना प्रतिज्ञा फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और कार्यक्रम है आपकी फरमाइश, और कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमने ली है फिल्म वारंट से, आवाज़ किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन का। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है धमनी किरवई से समेलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल धीवर, गोविंद धीवर की। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए आप सबकी पसंद का सुनते हैं फिल्म वारंट का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

वारंट फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमने ली है महबूबा फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, शब्द रचना आनंद बख्शी और संगीत राहुल देव बर्मन का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बैग कासिमा अली, नदीम अली। औरंगाबाद से राजेश सावले, पाटिल, शीतल, राजेश, राजदीप, राजेश और राशि राजेश। सपना संगीता रोड इंदौर से इस गीत को पसंद कर रहे हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। गौतमनगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म महबूबा का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आपने सुना महबूबा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत राहुल देव बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और आपके साथ हूँ मैं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, राही श्रीमती सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवांडकर, श्रीमती वैशाली गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर, कुमारी धोनी गवांडकर, परी सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छत्तीसगढ़ के दतरंगी से भागवत वर्मा की, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगापुर से सालिक पुजारी, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य आदित्य शिवानी शिमाली की। तो आइए सुनते हैं। एक पसंद और मिली है इसकी मयंक कृष्ण रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदान दामिनी वर्मा की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मासूम से। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत आर डी बर्मन का है और इसे आवाज दी है भूपिंदर और सुरेश वाडकर ने।

0: भूपेंद्र और सुरेश वाडकर के गाए फिल्म मासूम के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनकी फ्रांस और स्लोवाकिया की दो देशों की यात्रा शुरू होगी। फ्रांस में प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। भोपाल में श्री प्रधान ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और अंतिम दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसे इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की महत्वपूर्ण IG कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। 19वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 सोमवार से शुरू होगा। मुंबई में एक सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान वृत्तचित्र, लघु फिल्में और एनिमेशन सिनेमा का प्रदर्शन होगा। और ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:00 और रात 8:35 पर। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य आप सुनेंगे रात 8:00। 9:30 पर आप सुनेंगे संस्कृति भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए US प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन। ये दोनों कार्यक्रम आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन सकेंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:01 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा का आरंभ कर रहे हैं युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युव वाणी से।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं जयति
1: और मैं श्रद्धा स्वागत करते हैं आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है शनिवार और शनिवार के दिन हम लेकर आते हैं आपके लिए शनिवार स्पेशल हेलो फ्रेंड्स,
0: जिसमें हम करते हैं हमारी श्रोताओं से बातचीत और सुनते हैं उन्हीं की पसंद के गीत।
1: हाँ, और जयति, आज का जो ये हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम है ये बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आज हम हर बार की तरह आपकी पसंद के गीत तो लेंगे ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज आपको हमें आपकी पसंद के ऐसे गीत बताने हैं जो मस्ती भरे हो, खुश मिजाज हो, जिन्हें सुनकर ना मूड फ्रेश हो जाए, क्योंकि जैसी बाहर झुलसती गर्मी हो रही है जयति, उस हिसाब से मूड फ्रेश करने की बहुत जरूरत है। क्यों?
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके पहले कि हम हमारे कॉलर से कनेक्ट हो, मुझे लगता है हम चलते हैं कार्यक्रम की उस कड़ी में जहाँ हम पूछते हैं हमारे श्रोताओं से सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। और उसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है कि भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है।
0: हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब हमारे लिए ढूंढ कर रखते हैं। तो मुझे लगता है श्रद्धा, बिना देरी के हम जुड़ते हैं हमारे पहले कॉलर के साथ।
1: बिल्कुल,
0: नमस्ते
2: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: अरे सिसोदिया जी, आपसे तो मेरी हर अल्टरनेट सैटरडे बात हो ही जाती है।
2: बिल्कुल, नियमित होता है, 2005 से सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए कैसे हैं आप। लेकिन उसके पहले आप मुझे बता दीजिए कि आज आप आकाशवाणी से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
2: जी, माँ तुझे सलाम फिल्म का है, छोड़ के न जा पिया।
0: छोड़ के ना जा पिया, ठीक है, हम हमारे सिस्टम में वो गाना ढूंढते हैं। तब तक आप बताइए क्या कर रहे हैं आप अभी इस वक्त।
2: फिलहाल मैं अभी झालावाड़ में आया हुआ हूँ, 3 दिन से यहीं पर हूँ।
0: कोई खास वजह जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहें?
2: जी बिल्कुल, हमारे सिस्टर के यहाँ पर कुछ कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में आए हैं हम यहाँ पर।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है,
2: आप आए हैं।
1: अरे वाह, अच्छा तो बताइए आप।
2: जी मैं बताऊँ आपको, जैसे कि यार उनका कार्यक्रम भी हो गया और आसपास में हमने घूम भी लिया यहाँ पे झालावाड़ में।
0: बहुत अच्छी बात है, लेकिन

0: श्रोताओं, अब हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: कृष्णपाल परमार, चाइन में ना सोनकच तहसील देवास जिले।
0: देवास जिले से बात कर रहे हैं आप, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: दीदी, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। गाने के बोल है, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते।
0: जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते थे। अच्छा, आज वैसे हमने कुछ अलग ही थीम रखी थी, आपने तो बिल्कुल एकदम उल्टा ही गीत फरमाइश कर दिया।
1: क्या है कि दीदी, मैं कार्यक्रम सुन नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा रेडियो सेट पे नहीं हूँ, अभी देखा नहीं, सुना भी नहीं, वो तो कार्यक्रम में फोन लगाते हैं इसलिए फोन लगा दिया।
0: अच्छा, मतलब आपको कार्यक्रम पसंद है इसलिए आज आपने कॉल किया। खैर, मैं आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम की वैसे थीम ये थी कि आज हम बेहद ही खुश मिजाज किस्म के गाने सुनने वाले थे, जो खुशी खुशी, ये जो भयंकर गर्मी हो रखी है इंदौर देवास, क्या अलग अलग बात है। मतलब देवास में भी इतनी ही भयंकर गर्मी होगी इस वक्त जैसे इंदौर झेल रहा है।
1: सभी दूर ऐसी गर्मी है।
0: बिल्कुल, तो अब ऐसी गर्मी से बचने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे गाने सुने जाए जिनसे मन बिल्कुल एकदम खुशनुमा हो जाए।
1: दीदी, सुना नहीं था आपका कार्यक्रम।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, अपने बारे में बताइए।
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ दीदी।
0: अरे वाह, आप सिलाई का काम करते हैं
1: और कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, और क्या है 1995-96 से आपसे रेडियो से जुड़ा हुआ है।
0: अरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लंबे समय से आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप आकाशवाणी के नियमित श्रोता हैं। अरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम सुनने के लिए। साथ ही अब आपने जो फरमाइश की है हमसे गीत की, वो गीत अब हमें मिल चुका है, तो चलिए सुनते हैं आपकी।

0: आइए श्रोताओं, हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो,
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: चमन के फूल ही गुलाब कहते हैं, एक हम ही नहीं सभी आपको लाजवाब कहते हैं, आप दोनों को।
0: धन्यवाद। मुझे मालूम है आपका नाम क्या है, लेकिन आप फिर भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: हसीना जी, बंसरी बोल रहे फालदाना
0: जी। बंसरी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे, आप कैसे हो?
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, मोहम्मद रफी की आवाज में, गाने के बोल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: बढ़िया, बहुत ही अच्छी।
1: ये लगता है तेरी है, ये सुना दीजिए।
0: आपने तो आधा गीत सुना ही दिया, फिर हम आकाशवाणी से क्या बजाएं?
1: थोड़ा सा बजा दी।
0: अच्छा ठीक है जी, चलिए आपकी पसंद का गीत मिल ही चुका है तो सुन लेते हैं आपका ये गीत।

0: वाह वाह वाह। तो चलो इस खूबसूरत से गीत के बाद हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बोल रहा हूँ।
0: सूर्य प्रताप यादव जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।
0: गंगा जमुना सरस्वती से। और गीत के बोल।
1: चूड़ियां कंठी खनका वाले आ गए।
0: अच्छा, तो आज का ये गीत चुनने की कोई खास वजह?
1: नहीं, ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे।
0: अच्छा, गीत अच्छा लगता है इसीलिए आपने पसंद किया।
1: जी,
0: और बताइए आपके यहाँ अभी मौसम कैसा चल रहा है?
1: अभी गर्मी पड़ रही है मैम, बहुत गर्मी।
0: और आप क्या काम क्या करते हैं?
1: हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: ऐसा लग रहा है आप इस वक्त भी काम पर ही और वहीं से कॉल कर रहे हैं।
1: नहीं, इस वक्त तो हम घर पर हैं, वो फिलहाल चल रहा
0: अच्छा,
1: है।
0: अब गर्मी की दोपहर में आराम चल रहा है।
1: जी
0: अरे, आपकी ये बात सुनकर ना मुझे भी अपने बचपन की गर्मी की छुट्टियां याद आ गई, जब मैं अपनी नानी के घर जाया
1: बिल्कुल
0: करती थी।
1: जी, गर्मियों का मौसम तो छुट्टियों का ही मौसम रहता है और
0: बिल्कुल,
1: बहुत ही आरामदायक
0: और
1: मौसम
0: कूलर
1: रहता है
0: के
1: क्योंकि।
0: सामने बैठकर ठंडी ठंडी हवा में, और अगर आकाशवाणी के साथ ये गीत हो जाए तो और क्या बात हो।
1: जी मैम,
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: चलिए श्रोताओं, हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो।
0: हेलो।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते जी, क्या नाम है आपका?
1: दीदी मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ दीदी।
0: सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: जी हम तो बढ़िया दीदी, आप बताएं कि आप कैसे हैं?
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ। बताइए कि आज आप युवाणी की तरफ से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दीदी मुझे आप सुनो दीजिए, फिल्म का नाम है दिलवाले।
0: दिलवाले फिल्म से कौन सा गीत?
1: गीत के बोल रहेंगे दीदी, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे।
0: मौका मिलेगा, अच्छा अच्छा हम जब तक उसे सिस्टम में ढूंढ रहे हैं तब तक आप बताइए कि क्या चल रहा है अभी इस वक्त।
1: दीदी अभी तो कुछ नहीं, बस हमारे घर पे अभी बारिश हुई है 1 से 1.5 घंटे।
0: अरे वाह, तो मुझे लगता है कि आपके इधर मौसम थोड़ा ठीक हो रहा होगा, क्योंकि इंदौर में तो बारिश के तो कोई अते पते है नहीं, और गर्मी इतनी ज्यादा भीषण हो चुकी है कि संभाले नहीं संभल रही।
1: जी जी बिल्कुल दीदी, हमारे इधर कल भी बारिश हुई है और आज भी बारिश हुई है दीदी, और जो गर्मी से हमको थोड़ी राहत भी मिल गई दीदी।
0: लेकिन इंदौर में अभी किसी को गर्मी से कोई राहत नहीं मिल पा रही है, तो बारिश का मतलब मुझे लगता है कि आपके इधर शुरू हो चुका है मौसम।
1: जी जी बिल्कुल दीदी, हमारे इधर पे मतलब बारिश ने करवट ले ली दीदी, इधर बदल ली है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आपकी पसंद का गीत भी हमें मिल चुका है, तो सुनते हैं फिल्म दिलवाले से ये गीत।

0: चलिए श्रोताओं, जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: अनिल का जोर से बात।
0: अनिल जी बताइए, आज कौन से गीत की फरमाइश करना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है, आवाज है और गीत है, अजनबी कौन हो तुम?
0: जी अनिल जी, तो चलिए आज आप हमें बताइए कि अभी आप कर क्या रहे हैं। अनिल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप रेडियो सिस्टम से थोड़ा सा दूर जाकर बात करेंगे?
1: रेडियो नहीं चलता है।
0: आपकी आवाज दरअसल आने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और आवाज अटक रही है आपकी।
1: हाँ, नहीं यहाँ करीब भी रेडियो नहीं चल रहा है, रेडियो है नहीं हमारे घर पे, हम मोबाइल से बात कर रहे हैं आपसे।
0: अच्छा चलिए, आपकी जो फरमाइश का गीत है वो हमें मिल चुका है, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: मुझे लगता है श्रद्धा, हम एक आखिरी एक और कॉलर से जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है हम जुड़ चुके हैं उनसे। हेलो फ्रेंड्स,
1: जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल जी, क्या नाम है आपका?
1: शिव अलोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम आपसे।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम। आज जैसे कि रक्त दिवस था तो आज मैंने रक्त भी दान किया हुआ है, और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि रक्त देना बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को रक्त दान करना चाहिए, और अगर आप दे दान का संकल्प लेते हैं तो और भी अच्छी बात है।
0: बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है। कार्यक्रम को अंत करने के लिए आपने एक बहुत ही अच्छे नोट पे, हम उसे एक, मुझे लगता है, एक अच्छे संदेश और अच्छे मैसेज के साथ में हम उसे खत्म कर पाएंगे। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि आज आप युवाणी से कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम मूवी का नाम है द किलर, और इसमें एक गाना है दिल क्यों चुराया तुमने सनम।
0: दिल क्यों चुराया तुमने सनम,
2: फिल्म
1: जी
2: द किलर से। ठीक है, चलिए, हम आपकी जो पसंद का एक गीत है, दिल क्यों चुराया तुमने सनम, ये हम ढूंढते हैं। तब तक आप अपने बारे में कुछ और बताइए।
1: बस मैम, मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और समाज सेवा के कामों में लगा रहता हूँ मैम।
2: बहुत
1: नेत्रहीन हूँ, पर दोस्तों यारों के साथ कई ग्रुप चलाता रहता हूँ, जैसे कि गरीबों को भोजन की व्यवस्था हो गई, पक्षियों को पानी दाना, गाय को चारा पानी,
2: बहुत अच्छी बात
1: ऐसे
2: है
1: कामों
2: कि
1: में
2: आप
1: लगा
2: समाज सेवा
1: रहता
2: का काम
1: हूँ।
2: कर रहे हैं, और उम्मीद है कि
1: और
2: लोग आपसे सीख कर और भी लोग समाज सेवा में और भी काम करेंगे, रक्तदान करेंगे और अन्य काम करेंगे। चलिए, इसी के साथ सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो दोस्तों, अब कार्यक्रम अपनी आखिरी कड़ियों में पहुंच चुका है। अब कार्यक्रम की शुरुआत में जो दो प्रश्न पूछे थे हमने आपसे, उन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपके साथ हम साझा कर देते हैं,
1: जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न था कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है, और इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी।
0: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न था कि भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, और उसका उत्तर है बैरन द्वीप। उम्मीद है दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपने ढूंढ लिए होंगे और सही जवाब ढूंढे होंगे।
1: और हमें ये भी उम्मीद है कि हमें आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब दीजिए इजाजत मुझे यानी कि जयति
0: और श्रद्धा को।
1: नमस्कार।

और साधना सरगम को अभी आपने सुना फिल्म दीवाना में। गीत रचना समीर की थी और संगीत नदीम श्रवण का। और श्रोताओं, समीर की ही गीत रचना, नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है राज़।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का गीत, जिसे गाया है रूप कुमार राठौड़ ने। शब्द रचना जयदीप सहानी की।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: और सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीता पराग और साथ ही गए लोकगीतों को।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे गीता पराग और साथियों गाए मालवी माफ कीजिए लोकगीतों को। आकाशवाणी का यह इंदौर केंद्र है, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। लुधियाना में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल लोकोन्मुखी और विकास को प्राथमिकता देने वाला रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य

गांव के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनियाभर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री अलमुर्गन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। खेलों में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला

किसान श्रोताओं कार्यक्रम खेती गृहस्थी होगा। अब से कुछ समय बाद 7:20 पर आज की बात होगी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती पर, और साथ ही विश्व रक्तदान दिवस पर भेंटवार्ता हम आपको सुनवाएंगे दीपक नाइक से। दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। चित्रगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 9:15 पर। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी रात 9:30 पर, और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात 10:00।

ये था विवरण आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। अब जानकारी दे दें कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। कल की सभा में सुबह 7:20 पर वसुंधरा कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे को कैसे करें कम, धर्मेंद्र श्रीवास्तव से जानेंगे। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल होगा सुबह 7:35 पर। कल के सितारे बच्चे हमारे, ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 पर। छुट्टियों के बाद नए सत्र की तैयारी, वर्ल्ड डोनर डे की जानकारी दी जाएगी चर्चा में। प्रतिभागी होंगे महती वैष्णव, आशुतोष तिवारी, प्रकृतिक चौहान और तनीश भावसार, समृद्धि नागर। काम की बात में जानेंगे, 22 से पहले करें पौधारोपण की तैयारी। लोक संगीत में लोकेश माल और साथियों के गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे। सुगम संगीत में चंदनदास की गई रचनाएं हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत में विदुषी जयश्री पाटेनकर का गाया राग तोड़ी हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगी सुबह 10:00 और सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन होगा सुबह 10:05 पर। सांध्यकालीन सभा में युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी होगा 5:00। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:45 पर। और आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे कल शाम 6:30 से। यह था विवरण कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
3: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ

0: ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न। कृषि नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कामों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। और प्री मानसून गतिविधियों से मौसम हुआ सुहाना, भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन आज एक सर्वसम्मत इंदौर डिक्लेरेशन के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु, सहनीय खेती, कृषि व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनियमितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की ये बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। श्री चौहान ने बताया कि सदस्य और सहयोगी देशों के लगभग 60 विदेशी प्रतिनिधियों सहित कुल लगभग 100 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि और खाद्य सुरक्षा के प्रश्न पर ब्रिक्स देशों के बीच कितना गहरा जुड़ाव और गंभीरता है।
1: ब्रिक्स देशों के बीच आपस में कृषि व्यापार बढ़े, आपस में सहयोग हो, इस पर चर्चा हुई। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, इस पर भी चर्चा हुई है। फूड सिस्टम और कृषि के लिए नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राजधानी भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। श्री प्रधान ने यहां मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय वो था जब देश को खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं खरीद ना पड़ता था, और आज केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो के हिसाब से मुफ्त अनाज मुहैया करा रही है।
2: आज हम एकत्रित हुए हैं भारत में विकास की, आत्मविश्वास की, प्रगति की एक उत्सव मनाने के लिए। बीते 12 साल से विश्व के अद्वितीय लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल 12 साल जब पूरा हुआ, उसके तहत पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया।
0: सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी सहभागिता की। इससे पहले श्री प्रधान ने आज सुबह राज्य के खेल मंत्री विश्वास सारंग के साथ शूटिंग अकादमी में खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा लागू किया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी। प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कर विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए कल भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वृहद कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों के MSME उद्यमियों, स्टार्टअप और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हित लाभ भी वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप भी उपस्थित रहेंगे।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की महत्वपूर्ण IG कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है।
4: मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की, अपने यहाँ के इस नक्सलवादी दंश को समाप्त किया।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 22,000 पदों पर भर्ती के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने इवेंट, एग्जीबिशन और माइज के प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुंबई के सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रतिष्ठित 10वें डेसेनियल एग्जीबिशन एक्सेलेंस अवार्ड्स 2026 में MP टूरिज्म को कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट में उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार देश के इवेंट, एग्जीबिशन और माइज सेक्टर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक दिलीप कुमार यादव ने टीम के साथ ये पुरस्कार ग्रहण किया। महिला स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शहडोल जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर निवास के पास पुराने RTO कार्यालय की भूमि पर 3.5 करोड़ की लागत से सुविधाओं से युक्त विशेष परिसर का निर्माण किया जाएगा। ये परिसर महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पाद के प्रदर्शन और विपणन के लिए समर्पित होगा। लगभग 1 एकड़ भूमि पर परिसर का निर्माण होगा। परिसर में 32 दुकानें बनाई जाएंगी जिसमें महिलाएं अपने हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद, घरेलू सामग्री और अन्य उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। यहां 4 दुकानों के व्यावसायिक परिसर भी बनेगा जिसके किराए से पूरे परिसर का मेंटेनेंस किया जाएगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून की प्रवेशता की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आज भी राजधानी भोपाल में दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज जबलपुर में एक निजी संस्था द्वारा विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना और जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराना है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में कल पशु कल्याण समिति, पशु क्रूरता निवारण समिति और जिला गौ पालन गौ संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई और नर्मदापुरम जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे नवांकुर अभियान के तहत कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ग्राम पंचायत रंडाल पहुंचकर सीड बॉल निर्माण गतिविधि में हिस्सा लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न। कृषि, नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कामों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य और प्री मानसून गतिविधियों से मौसम हुआ सुहाना। भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में हुई बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है किसान श्रोताओं कार्यक्रम।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुन्नवाला मारा सबै किसान भाई बहन को संध्या कोठारी को राम राम न भाई होण आपका अपना इना कार्यक्रम में आप सबै को स्वागत है। भाई होण बात न करांगा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। देखो अपन का प्राकृतिक खेती जैविक खेती पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और देखो प्राकृतिक खेती करांगा तो हमारो जो जलवायु जो बिगड़ी गयो वो सुधरी जाएगा। और हम देखो प्राकृतिक खेती करने का लेन भी स्वतंत्र छे और करनो चाहिए। हमेशा विकास जैसे कहान की सतत विकास यो भी होनो चाहिए। हम एक सरी को एक जसो हम खेती बाड़ी का काम करा तो हमारी जो भूमि छे जो मिट्टी छे वह भी बीमार हो जाए और ओका में भी अच्छो उत्पादन नहीं आवतो। जैसे कोई परिवर्तन होनो बहुत जरूरी छे। कभी हम जैविक खाद कभी रासायनिक खाद और प्राकृतिक खेती जैसे प्राकृतिक खाद नागिना अगर हम खेती करा तो हमारो बहुत अच्छो जो हमारो खेती बाड़ी को काम छे वो चलग। साथ ज में आपको बता दूँ कि सबसे बड़ी बात छे कि सुरक्षित भोजन जेका लेन मनुष्य को जीवन छे और भोजन पर हम निर्भर हाँ। तो अगर भोजन ज हमको जहरीलो मिलेगा तो हमारो जीवन कहाँ जाएगा। तो हमको सुरक्षित भोजन का लेन बहुत जरूरी छे कि प्राकृतिक खेती हम करा। साथ ज में मिट्टी को स्वास्थ्य भी हमको अच्छो बनाए रखनु एक आलेन भी हमको प्राकृतिक खेती करनु बहुत जरूरी छे। जो सूक्ष्म जीव छे छोटा पौधा छे उनका भी हमको बचावने की बहुत जरूरत छे। कई बार क्या हो कि रासायनिक खाद जो हम डाली रहे ओका से हमारा जो सूक्ष्म जीव छे वो सब मरी जाए तो उनका भी हमको जीवाणु। साथ में जो एक बहुत बड़ी बात छे कि हमारा पशुधन का भी सुरक्षित रखनु और पशुधन भी जब सुरक्षित रहेगा जब हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करांगा। पशुधन से जो मिलने वाला जो अवशेष है हमको वो सब हम हमारी खेती में काम में लेवा। पशु को पालन करा पशु का भी सुरक्षित रखा और पशु का भी बिल्कुल हम अच्छो बढ़िया सो भोजन खिलावा ताकि जो भी हम उनका खाद छे हम उनका घास है सुकलो छे और जो भी हम चीज़ ने उनको खवाड़ा पौष्टिक चीज़ ने छे। पुराना जमाना में तो आप सबको मालूम होगा कि घी तक हम हमारा पशु का पेवाड़ता था। नमक की आवश्यकता भी हमारा पशु को हो तो खड़ी में नमक मिले न देवान काकड़ा खवाड़न तो अच्छी से अच्छी चीज़ हमारा जब पशु ने कभी खवाड़ांगा तो यो मानो कि निश्चित रूप से पौष्टिक दूध जो हमको मिलेगा वो हमारा सारा मनुष्य न का दूध से तो हम दूध तो सुबह उठते साथ दूध की आवश्यकता रहे तो हमारा नाना मोटा बालक छे हमारा बीमार बूढ़ा ठाड़ा मनुष्य छे बीमार व्यक्ति छे किसी भी उम्र को हो उनका अपन कहें कि संपूर्ण आहार जो कहें कि दूध छे। कभी कोई सी नहीं कहीं खवाए पिवाए कहीं नहीं है उनका से हजम हो तो भी कभी एक गिलास दूध भी उनका पेट में चली गयो तो यो मानो कि पूरा शरीर की पूर्ति हुई जाए। तो एक कारण मनुष्य जीवन का बिल्कुल व्यवस्थित चलने का लेन अच्छो पौष्टिक दूध और अच्छा भोजन की आवश्यकता छे। एक कारण प्राकृतिक खेती करनु हमको बहुत जरूरी छे और हमारा किसान भाई बहन का इना मिशन का द्वारा यो बताऊ कि आप प्राकृतिक खेती करो। साथ ज में हम कोई तकलीफ आवे तो जो प्राकृतिक खेती करी रहा है उनका से संपर्क करा किस प्रकार से हम यह करा ताकि हमारा किसान भाई बहन का भी लागत भी कम लगा

अना जो हमारो अनाज है वो भी अच्छो उपज में आव और अच्छो हम सबने का देवा और एक ही ब्रांड बने ना पैकेज बने ना हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी को ये सामान देना अच्छो मुनाफो हमारा सब किसान भाई बहन कमाव। तो देखो हम प्राकृतिक खेती का तरफ जावा कोशिश करा कि ज़्यादा से ज़्यादा वाच करा। तो भाई हूँ कार्यक्रम का आगे बढ़ावांगा ना अब सुनागा एक लोकगीत एक गायो रतन दास बैरागी ना।